आज की इस भावनाओं से सजी महफिल में आपकी आवाजों ने जो रंग भरे हैं, ये अपनापन इस जुड़ाव के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।

FM बैंड 101.9 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र और आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10 बज चुके हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम NCERT।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं।
3: विमलेश जी, कल

0: हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन की
1: जी।
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षावन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट
1: जी।
0: तो शुरू करें
1: जी? जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत
0: जी।
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षावन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है
1: जी। हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है
0: जी। शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी

0: निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहे

0: कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक

0: अन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: Ati la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?

0: और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग हुए, सब कुछ हुआ। फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला
0: ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए। तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, घर है वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं। और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी, जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत।
0: तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं ले गए आप,
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: ले गए,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ।

0: उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितने बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितने बटनी थी बट चुकी ये जमीन अब तो

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले उनकी यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से। मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: राकेश जोशी,
1: उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
0: सब चीजों को संभालते थे।
1: तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से

0: जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने
0: रखते हैं, ऐसा कम होता है
1: जी।
0: तो मैं, हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
1: खयाम
0: साहब आ गए, लक्ष्मी चंद प्यारेलाल जी आए
1: जी,
0: आनंद जी आए
1: बिल्कुल,
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
1: मुझे याद है, खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
0: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास नहीं है।
0: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या गानों पे बातें हो रही है, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक हुए।
0: प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो, चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं, है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी

0: का सवाल ही नहीं उठता कि वो बांध जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी.
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं सबके। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस हो रहा था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए। फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे। तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं। तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, करेंगे उसको। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया।
1: जी जी जी।
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है।
1: हाँ।
0: सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में।
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह।
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में,
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो

0: तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था
1: जी जी,
0: मतलब किसी
1: लाइट होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह,
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।

0: से हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
3: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

कि अब जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आपकी आशा, ये एल्बम का नाम आशा भोसले की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना। संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटाला का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के

0: लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोक भवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 12:23 हुए हैं। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से अब आइए सुनते हैं अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: हेलो
4: सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। दोपहर के ठीक एक बज गए हैं और वक्त हो गया है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। जी हाँ, फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में आज हम शामिल करेंगे आपके कमेंट्स और सुनवाएंगे आपके पसंद किए हुए गीतों को।

0: कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और इससे पहले ये संदेश।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और पहला गीत हमने लिया है आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है कुदरत। गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं विष्णु टेलर दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से, संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, राधा नामदेव सहारनपुर से, राजेश कुमार वर्मा मऊ उत्तर प्रदेश से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, मसरूर हसन गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, उमा सिंह उत्तराखंड और पौड़ी गढ़वाल से, और इसी गीत की फरमाइश की है पंजा जी ने नरवेल महाराष्ट्र से, जगमोहन सिंह प्रजापति ने इस गीत की फरमाइश की है गांव लहोडड़ा जिला बागपत से, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, रविंद्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। आप सबने पसंद किया है इस गीत को, और आवाज है आशा भोसले की, फिल्म का नाम है कुदरत। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला।

0: आपकी पसंद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं अपने श्रोताओं के किए हुए कमेंट्स को और सुनवा रहे हैं उनके पसंद किए हुए गीतों को। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल कर रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा। इन्होंने हमें कमेंट्स किया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, और गजानन येले सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, शुभ चंदेर बजाज कालका से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ कैंट से, प्रमोद कुमार साहू बोड़सरा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा जो अगला कमेंट आया है वो है नरेश मल्होत्रा का, और वेद प्रकाश गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से, शेख जियाउर रहमान मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से, रियासत हुसैन सिद्दीकी का कमेंट आया है जसपुर उत्तराखंड से। इसके अलावा जो अगला कमेंट हमें दिख रहा है वो है सुरेश गगनेजा का जलालाबाद वेस्ट से, दिलावर खान ने कमेंट किया है रघुवीर नगर से। इसके अलावा अगला कमेंट आया है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा का पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आप सबने सुनना चाहा है इस गीत को, लता मंगेशकर और अमित कुमार की है आवाजें, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर। पसंद करने वाले श्रोता हैं योगेश सरवा उरेटा डोडिया लोहार जिला बालोद से, यसीन अंजान गिरिडीह झारखंड से, प्रवीण श्रीमली जिला खरगोन।

मध्य प्रदेश से। आप सबने कमेंट किया है और सुनना चाहा है इस गीत को। इसके अलावा जो अगला कमेंट है वो है लालगिरी गोस्वामी का, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आपने हमें फरमाइश की है। संजय कुमार साहू ने फरमाइश की है पोटिया कला दुर्ग से, और आफताब अंसारी इनका कमेंट आया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा फरमाइश करता है विक्रम मालवीय जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, और विजय सुरालकर मौताला महाराष्ट्र से। इसी गीत की फरमाइश की है रज्जाक मोहम्मद ने हनुमानगढ़ राजस्थान से, और सुनील पाठक ने हमें कमेंट किया है अनारकली बाजार जगराओ से, और इसी गीत की फरमाइश आई है धीरज गुप्ता के कस्बा उगेठी से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है नमक हराम। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराए नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: FM बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं आपके कमेंट्स और सुनवा रहे हैं आपके पसंद किए हुए गीतों को। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो अगली बार आप कमेंट जरूर करें और सुनिए अपने मनपसंद गीत आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल कर रहे हैं अगली फरमाइश। धीरज गुप्ता ने हमें फरमाइश कर भेजी है कस्बा उगेठी से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, निसार सलमानी ने हमें कमेंट किया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। इसके अलावा जो हमें कमेंट दिख रहा है वो रियासत हुसैन सिद्दीकी का है जसपुर उत्तराखंड से। जाकिर मंसूरी आपने हमें कमेंट किया है बाजार रोड मुंगेसापुर से, और फागू राम यादव जी हाँ, इन्होंने हमें कमेंट कर रखा है संबलपुर कांकेर से। नरसिंह राजपूत ने फरमाइश की है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। विनोद वांडेलकर ने हमें फरमाइश की है रायपुर छत्तीसगढ़ से। दिलशाद हुसैन ने कमेंट किया है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो आप सबने कमेंट किया है और सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज में फिल्म आशिकी का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का कुमार सानू की आवाज में आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम का सफर आगे बढ़ाते हुए हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में अगला कमेंट। तो अगला कमेंट आया है दिलशाद हुसैन का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। रज्जाक खान का, ढानकी रोड महाराष्ट्र से। आप सब ने फरमाइश की है। और इसके अलावा जो अगली फरमाइश आई है वो है अरविंद कुमार की, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। राहुल मनवर ने हमें कमेंट कर रखा है, शाहू नगर यवतमाल से। राधे श्याम शर्मा आपने कमेंट किया है, गांव होडी खेड़ा जिला सिरसा से। और इसके अलावा जो अगला कमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो है नारायण लाल साहू का, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश आई है बीआई धाकड़ की, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इसके अलावा अरुण कुमार मालवीय ने हमें फरमाइश की है वाराणसी से। बालकृष्ण ने फरमाइश की है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। और संतोष भाकरे ने हमें कमेंट कर रखा है जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। तो आप सब ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में इस गीत को सुनना चाहा है। और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए शामिल कर रहे हैं हम अगला कमेंट राजेश वर्मा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। सुदर्शन शाह ने हमें कमेंट किया है नेपा नगर मध्य प्रदेश से। हुकुम कर्माकर आपने हमें कमेंट किया है बेरड़ी मध्य प्रदेश से। इसके अलावा जो फरमाइश आई है वो है लाल बाबू दीवाना की जेल रोड दिल्ली से। राघव बघेल ने हमें फरमाइश की है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। बोधराज खोरवाल आपने हमें फरमाइश की है उत्तम नगर दिल्ली से। संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से। फाहिम मंसूरी आपने हमें फरमाइश की है बांदा उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा जो कमेंट हम देख रहे हैं वो है पटवा जी का ग्राम धरदेई छत्तीसगढ़ से और धर्मेंद्र शिपा इनका कमेंट आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आशा भोसले अभिजीत की आवाज में ये गीत और फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत

कार्यक्रम में अगला कमेंट हमने शामिल किया है बदमारी जयपाल गांव अरायन जिला श्री गंगानगर से उत्तम सिंह जंघेल आर्य नगर कोहका भिलाई से ओम बगेरिया गांव बांदीवाला से राजकुमार पटेल सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर से और रिजवान खान आपने हमें कमेंट किया है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा अगली फरमाइश है वलीउल्लाह अंसारी की पुराना तालाब डुमराव से और अगली फरमाइश है मोहम्मद फारूक के गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। अगला कमेंट आया है जीवन विश्वकर्मा का चाईबासा झारखंड से। इसके अलावा टीडी मल्होत्रा ने हमें कमेंट किया है मोहाली चंडीगढ़ से। विनोद मोड़त आपने हमें कमेंट किया है जिला उज्जैन बोर खेड़ा से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

गीत को लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है इज्जत, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगली फरमाइश है तुलसी मस्किन शाहदरा दिल्ली से, तुलसीदास शुग पंचकूला चंडीगढ़ से, नरेंद्र सुधार नोहर राजस्थान से, सुभाष गोदारा आपने फरमाइश की है गांव हीरावाली फजिल का पंजाब से, रामचंद्र मखेजा धमतरी छत्तीसगढ़ से, सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से और विजय सिंह महोबिया रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, शाहजी बोडखे हिंगोली महाराष्ट्र से, नंद किशोर घटे बीड शहर महाराष्ट्र से, राजेश खोबर खेड़े शिवाजी नगर वडाली देशमुख से। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है और आप भी हमें फरमाइश कर सकते हैं फेसबुक पेज कुछ तुमने कहा में, और लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने गीत और अपने एड्रेस को, तो आपकी फरमाइश भी यहाँ पर पढ़ी जाएगी और आपके पसंद किए हुए गीत यहाँ पर सुनवाए जाएंगे। 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: कार्यक्रम गीतांजलि का सबसे पहला गजल आपने सुना पंकज उधास के आवाज में।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: गुलाम अली की आवाज में आपने सुनी ये गजल कार्यक्रम गीतांजलि में।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस।

0: की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। अब आइए सुनते हैं दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों

0: मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
5: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट

0: आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ हार्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस वीसीके सीपीआई सीपीएम आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग रामेश्वर तेली चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं ये आकाशवाणी है आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है एक रिपोर्ट
3: ठीक है आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं चाय
4: ये चाय आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है तमाम शिकवे गिले भुला देती है ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है चाहे वो सिर दर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश

0: में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 2:30 हो चुके हैं। बहनें सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।

0: की समस्या, क्योंकि आज आतंकवाद हर देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। यह एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, हमारा देश शुरू से ही शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश देता रहा है और कहते भी है ना कि भाई जियो और जीने दो। इसीलिए सखियों, भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उनको हम जागरूक बनाएं, आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से वो बचें, और साथ ही जो हमारी आम जनता है वो भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बने और हमारे देश में शांति, एकता और भाईचारे ऐसे ही बढ़ते रहें और सभी उससे मिलजुल कर साथ में रहें। और ये तारीख, आज की तारीख हमें एक बात और बताती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज के दिन ही पुण्यतिथि के रूप में भी इसे दर्ज किया गया है। यानी 21 मई 1991 के दिन एक आतंकवादी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उनको याद करते हुए उनकी स्मृति और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सखियों, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सभी आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ हम एकजुट होंगे और तभी हम पूरे समाज में, पूरे देश में हम अपने लोगों को इससे बचा पाएंगे, जागरूक हो पाएंगे। यानी कि सभी एक साथ जब खड़ी होंगे ना, तब हम आतंकवाद से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक छोटे से विज्ञापन के बाद।
1: पे लो न चाहिए वो भी

0: ऐप से वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: So, क्यों आज हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हमारा स्वागत होता है चाय के साथ। यानी कि चाय शब्द किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर घर में चाय पिया जाता है। अगर हम ये कहें कि पानी के बाद अगर कोई पिए जाने वाला ज्यादा ड्रिंक है तो वो है हमारा चाय। और इसके औषधीय गुण तो बहुत सारे हैं, यानी कि अगर सही ढंग से बनाया जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप समझ गए होंगे भाई, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय पीने का मन कर रहा है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया भर में चाय की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है उसका उजागर करना है। यानी कि चाय अगर ढंग से पिया जाए, सही तरीके से पिया जाए, और तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है। भाई आज है गुरुवार और हम लेकर आए हैं आपके लिए गीतों भरी कहानी। आज का जो हमारी कहानी का शीर्षक है वो है जीव है प्रकृति के अभिन्न अंग। जीव है प्रकृति के अभिन्न अंग। लगभग 3 साल पहले की बात है, अनु अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। अनु जिसकी अभी अभी परीक्षा समाप्त हुई थी और उसका छोटा भाई भी उसके साथ था, और घर के और परिवार के सदस्य, मम्मी, दादी, दादा, चाचा, पापा, सब गाड़ी में बैठकर चिड़ियाघर घूमने गए। जब अनु वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर रंग बिरंगी बहुत सारे पक्षी थे। वो बहुत खुश हुई। कहीं पर सफेद मोर, तोते और ढेर सारे उल्लू की प्रजातियां भी थीं। अनु ने कहा, पापा पापा ये कौन सा पक्षी है? पापा ने बताया, बेटा ये हिल मैना है। और वो क्या है? तो दादाजी ने बताया, ये भारतीय गिद्ध है। और दादाजी वो क्या है? वो बगल में जो है वो बताइए ना क्या है? अरे बेटा वो तो चील है। आपको नहीं पता? नहीं दादाजी, कहाँ देखा है। यानी कि सब इतने अच्छे लग रहे थे अनु को, और सब पक्षी डाल पर बैठ के आराम कर रहे थे जैसे मानो वो किसी निंद्रा में हों।

0: देती।
1: अब अनु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। देखो देखो वो क्या है, अरे वो तो सफेद बाघ है, और ये बेटा एशियाई शेर है, और वो देखो ना बगल में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। अच्छा, और दादी माँ वो क्या लेटा है पानी में, कौन सा जानवर है? बेटा ये दरियाई घोड़ा है। अच्छा, और वो देखो जिसकी लंबी सी गर्दन, जिराफ। अच्छा, और वो भालू। बड़ा मजा आ रहा है ना मम्मी यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब अनु धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी उसको आवाज आती है तेज से, और वो थोड़ी सी डर जाती है। ओह हो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये जानवर, कितना अच्छा बनाया है सब भगवान ने ना। पापा वो क्या है, वो तो तेंदुआ है, पता नहीं ये तो बहुत ज्यादा डरावना सा है ना। बेटा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी जीव जंतु प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। वो कैसे पापा, जंगली जानवर? देखो बेटा, चाहे जंगली जानवर हो या पशु पक्षी हो, सभी हमारे इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखते हैं। अच्छा, और क्या होता है, और वनों के

विकास में मदद करते हैं, मिट्टी को मजबूत बनाते हैं, उसका उपजाऊपन घटने नहीं देते हैं। समझे बच्चों? इसके बाद अनु बहुत ध्यान से पापा की बात सुनने लगी।

सखियों, चलते चलते उसके दादा और दादी पूरी तरह से थक चुके थे। कहा, चलो अब घर चलते हैं। अनु ने कहा, अरे नहीं ना, अभी तो हमने आधा ही चिड़ियाघर देखा है, थोड़े से तो जानवर देखे हैं, सारे बचे हुए हैं ना। पापा ने कहा, बेटा फिर आ जाएंगे दोबारा, फिर छुट्टियों में आएंगे, परेशान मत हो। लेकिन बेमन से अनु आकर गाड़ी में बैठ गई, सभी गाड़ी में बैठ गए।

और अनु अभी भी चिड़ियाघर के पक्षियों का ख्वाब ही देख रही थी। दादाजी ने कहा, अनु क्या हुआ बेटा, सो गई क्या? नहीं दादाजी, मैं सोच रही थी पक्षी कैसे हमारी मदद करते हैं। दादाजी ने कहा, देखो देखो ना बिटिया, चमगादड़, उल्लू, मेंढक और छिपकली जैसे जीव फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। सही कह रहे हैं दादाजी, और मेरी क्लास के टीचर ने भी कहा था ना, जो केचुए होते हैं ना वो किसान के मित्र होते हैं। बिल्कुल सही कहा था बेटा आपकी मैम ने। दादाजी भी बात सुन रही थी और कहा, मेरे बचपन में घर के पास एक फूलों की बहुत बड़ी बगिया थी, जानती हो, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे और इतनी रंग बिरंगी तितलियां आती थी जिसे देखकर मेरा मन खुश हो जाता था। अब तो कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, अब कहाँ है वो तितली, कहाँ है वो फूल, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हम इतने आगे बढ़ गए हैं, हमने बहुत कुछ पाया है लेकिन बहुत कुछ हमने खोया भी है बेटा। और ये भगवान के द्वारा बनाए हैं ना सभी जीव जंतु बेटा, सभी पक्षी हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बहुत लाभदायक हैं। अच्छा, और ये चील, कौवे, सब बेटा सब, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके फायदे ना हो। यूं ही ऐसे ही कोई नहीं बनाया जाता है ना बेटा। ठीक है, अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो फिर ख्वाबों में अपने गुम हो गई।

0: अनु बहुत खुश थी। उसने पापा से कहा, पापा पापा हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? पापा ने कहा, बेटा देखो जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो जैसे हमें प्यास लगती है, हमें खाने का मन होता है, ऐसे ही हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए पानी दाना रखें, सड़क पे घूम रहे जानवरों को भोजन दें, घायल अगर कोई पशु पक्षी है तो उसको चिकित्सा दें, उसकी मदद करें और आवास की भी सुरक्षा दें। अब अनु समझ चुकी थी कि जीव जंतु हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग कैसे हैं। यदि ये जीव ना रहेंगे तो पूरी प्रकृति का चक्र थम जाएगा, क्योंकि पूरी प्रकृति व्यवस्था में ये हमारे परम मित्र जो हैं, इनके बिना पृथ्वी बंजर और निर्जीव ग्रह बन जाएगी। तो इसलिए हमें इनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: कहानी नहीं पत्र।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम नारी जगत में। आज हम सुन रहे थे गीतों भरी कहानी और विषय था जीव हैं प्रकृति के अभिन्न अंग। देखियो सखियों, आज की दुनिया में लगभग 70 से 75 लोग

प्रतिशत लोग अपने आहार में मांस का सेवन करते हैं, जो कि सही नहीं, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे हमारा जो शरीर बना है, ये साइंस भी कहता है कि वो पूरी तरह से शाकाहार के लिए ही बना है, और हम अपने सिर्फ थोड़े से लालच और थोड़े से फायदे के लिए हम इन बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, जो कि गलत है। और देखिए ना, हजारों प्रकार के हमारे पास सब्जियां हैं, दाल हैं, फल हैं, नट्स हैं, और बहुत सारी कितनी सारी प्रकार की वैरायटियां हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। देखिए सखियों, हम प्रकृति में अपने एक योगदान दे सकते हैं, क्या करके, शाकाहार को अपना के। भाई समय हमारा जो है वो धीरे धीरे बीत रहा है, और

हमारा जो है वो धीरे धीरे बीत रहा है, और हम ये कहेंगे कि जो हमने आज, मतलब आज हमने जो कहानी सुनी वो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। समय हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, तो अपनी सखी सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। तीन बज चुके हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
0: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं, जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
1: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
0: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
1: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
0: हाँ,
1: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
1: उन्हें अपना बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ न कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां तो लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए के गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
0: चाय चाहिए,
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले ही बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम मान देती हैं। तो भाई अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
1: करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में

0: बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सुमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभाले की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सुमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो असल किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको, के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती है कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती है पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद

0: रामवीर अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: ना तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरग से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन हाउंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो का है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब का हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, यहाँ जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन

0: नहीं, हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तोहफा हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर ताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों हो गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर

0: 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
1: कप चाय

0: मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं, एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है, जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पे तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है, और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया कि ये मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारी श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते लगता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से

0: भी बचाती है, और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सन ग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना

0: करें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
1: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
0: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगे। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सखाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रिया से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियाँ नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियाँ कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपन से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलिम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोल ने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल में।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्के की मतलब पता नहीं लग रहा पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्के लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है की हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी, जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी में।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक तैयारी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: उनका नाम इम्तिहान और गाने के बोल है, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी, ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी,
1: हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने

0: सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
1: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंधेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
0: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
1: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
0: ना, बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं। विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी। तो
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी।

0: अच्छी है।
1: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है, वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
1: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
0: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
1: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
0: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है, कहीं से भी हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
1: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
0: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
1: शाम को
0: कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
0: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो आप लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेंपल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ जी, हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुप जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सॉफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सॉफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सॉफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सॉफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार साहिब।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे, ग्राम सामनाकर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। साहिब,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे तीसरे साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी, ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोती बमाजा बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले जोतीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोतीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले काटी।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा, और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना, दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: और भाई साहब क्या हाल है
2: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने

0: आप क्या हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों, आज है आपका पसंदीदा युवा संवाद सजीव फोन इन कार्यक्रम। और दोस्तों, आज का युवा संवाद का विषय है संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। साथियों, हमारी फोन इन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप डायल करें 7376804090 और युवा संवाद से जुड़ें। और हाँ, कॉल लग जाने पर कृपया रेडियो से थोड़ी दूरी बना लें ताकि आपकी आवाज़ हमें सही से मिल सके। तो फिर देरी किस बात की, डायल करते हैं 7376804090। दोस्तों, एक बात आज जो हम करने जा रहे हैं, जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वो सीधे हमारे दिल हमारी पहचान से जुड़ा है, संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि संस्कृति का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें, अजायब घर या इतिहास की किताबें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति तो हमारे जीने का अंदाज है। हम सुबह उठकर कैसे बड़ों को प्रणाम करते हैं, हमारे त्योहारों की मिठास, हमारी लोक कथाएं और वो दादी नानी के नुस्खे, ये सब हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ें हैं। और अगर जड़ें मजबूत ना हो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी तूफान में टिक नहीं पाता। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दोस्तों। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैम,
2: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: हम अयोध्या से बोल रहे हैं।
2: अयोध्या से बात कर रहे हैं, आपका शुभ नाम?
3: देवव्रत शुक्ला।
2: देवव्रत शुक्ला जी, आज का हमारा विषय आपको पता है युवा संवाद का?
3: जी मैम।
2: आज का जो हमारा विषय है युवा संवाद का, आपको पता है?
3: नहीं मैम।
2: आज का हमारा विषय है संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। जी, इस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे। अच्छा, संस्कृति का मतलब समझते हैं आप? लगता है नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट हो गई है। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए संस्कृति को जानना और समझना। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
4: नमस्कार
2: जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से।
2: राकेश जी शिमला से बात कर रहे हैं। राकेश जी, आज का हमारे विषय के बारे में आप जानते हैं?
4: जी, संस्कृति की जो है हमारा संरक्षण, ये है टॉपिक।
2: संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका क्या है?
4: जी, संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका ये है कि हमें अपने जो है संस्कृति को संरक्षण करना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बात है, हमें अपने संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। भले हम नई संस्कृति को हम जीवन में लाते, लेकिन पुरानी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है।
2: अच्छा, कोई ऐसी संस्कृति जो आपके यहाँ कई पीढ़ियों से फॉलो हो रही हो, जो आज भी आप उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी एक संस्कृति है जो आप बता सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं?
4: जी जी जी, हमारे पुरानी जो संस्कृति है, जैसे कि जो हमारे जो कई जो पुराने रिवाज हैं, सबसे पहले ये है कि हमारी संस्कृति है हमारा बोलचाल।
2: जी,
4: जो जो हमारे जो जो जैसे हमारे जो है पीढ़िया जो बोलते आ रही है, तो अभी हम उसका बोलता चाल का हम अभी तक हम निभाते हैं। और हम भी उसी भाषा में बोलते हैं जो हमारे पूर्वज बोला करते थे। और हमारे जो रीति रिवाज है वो इस आज भी हम निभा रहे हैं, जो हम जो पहले निभाए किया करते थे लोग।
2: जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी भी आप उस भाषा को भूले नहीं हैं, उस भाषा का प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं और आपके थ्रू आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस भाषा को जानेगी, समझेगी और इसमें बात करेगी।

0: जी
1: जैसे हमारी पहाड़ी बोली है, पहाड़ी गीत है
0: जी
1: और पहाड़ी नाटी है, आज भी हम उसको संरक्षण करते हैं। जब हम कभी जब डीजे में कहीं जैसे हम फंक्शन में जाते हैं, आज भी हम हिमाचली संस्कृति को आग लाते, चाहे कोई भी फंक्शन होता है या शादी ब्याह होते, तो हमारे अपने जो है प्रदेश जो हमारे शिमला जिले की जो होती है पहाड़ी संस्कृति या नाटी कहते हैं, तो हम उसका हम इस्तेमाल आज भी करते हैं, आने वाले बच्चे भी इसका इस्तेमाल बखूबी से निभाते हैं।
0: जी हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और आपकी बातें सुन के और भी हमारे युवा प्रेरित हुए होंगे कि हाँ संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए, उसमें एक अलग खुशी मिलती है। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। साथियों आज 21 मई है और आज पूरी दुनिया विश्व संस्कृति सांस्कृतिक विविधता दिवस मना रही है। यूनेस्को द्वारा घोषित इस विशेष दिन का मकसद दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धि को सहेजना और उनके बीच आपसी समझ को बढ़ाना है। जैसे एक ही बगीचे में अलग अलग रंगों के फल उसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी दुनिया भी अलग अलग भाषाओं, पहनावे और लोक कलाओं से सजी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये भिन्नता समाज को बांटने के लिए नहीं बल्कि आपसी शांति और विकास के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दोस्तों। हेलो।
2: हेलो
0: जी। Hello. नमस्कार
2: जी। नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ।
0: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बात कर रहे हैं, अपना शुभ नाम फिर से बताइएगा।
2: जी अविनाश चली।
0: अविनाश जी, अविनाश जी आज का विषय हमारा आपको पता है क्या है?
2: जी बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा संस्कृति संरक्षण में हम सबकी भूमिका।
0: जी जी बिल्कुल, तो इस पे हम मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि आप संस्कृति को फॉलो करते हैं या नहीं?
2: जी फॉलो तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारे जो माता पिता थे या फिर हमारे दादाजी थे, उन सभी ने हम सबको जो शिक्षा दी थी कि हमारा जो संस्कृति है वो हम सबकी धरोहर है, तो इन सबको आगे ले जाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि उस संस्कृति से ही हम सबकी पहचान होती है। क्योंकि देखिए त्रिपुरा में अलग संस्कृति होती है, आपका उत्तर प्रदेश का ही अलग होता है, और मतलब हर राज्य का अलग अलग संस्कृति होता है, तो इन सभी से ही हम सबकी पहचान होती है। तो हम सभी को अपने धरोहर को संभालने के लिए अब हम सबकी जिम्मेदारी बनता है कि आगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम सब इन सबको उन सभी को सिखा के जाना कि कैसे क्या होता है, जैसे लोक संगीत हो गया हो या फिर आगे जो उन सभी के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए इन सभी जो हमारे जैसे कि त्रिपुरा में लोक संगीत जो रंगोली में आता है वो एक से बढ़कर एक होते हैं, तो हम सभी जो सुनते हैं तो हम सभी को सुनते हैं और गाने की कोशिश भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, कभी आप गए हो आपके दोस्तों के बीच में या कभी आपने अब अपनी लोक गीतों के बारे में बात करी हो और बताया हो, तो आपको गर्व फील हुआ है, गर्व महसूस हुआ है?
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सब जल्दी इकट्ठा होते हैं एक दूसरे से, तो हम सभी इन सब बातों में चर्चा करते हैं, और आजकल की देखिए युवा पीढ़ी इस वजह से पीछे हो रही है क्योंकि मोबाइल के कारण देखिए वो न ही किसी से मिलना पसंद करते हैं, वो बस पड़े रहते हैं एकांत जगह में, बस वो समझते हैं कि हम सबकी दुनिया ही मोबाइल में है, तो मोबाइल का यूज तो बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरत भी है और अभी आज के जमाने के लिए उसका मांग भी है, तो इनका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरत है जितना ही करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के लिए सिर्फ यही नहीं है बल्कि हमारे संस्कृति को जो धरोहर है उनको भी आगे
0: लेना चाहिए। और आज हम मॉडर्न तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हम मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल मोबाइल का यूज ज्यादा हो रहा है, जैसे कि रील्स शेयर हो रही है, मीम्स शेयर हो रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति को भी उसके द्वारा शेयर कर सकते हैं, हम अपने यहाँ की जैसे कि आपने बताया आपके यहाँ के लोग गीत आपके यहाँ अपना खान पान
2: कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल तो संस्कृति के ऊपर तो चर्चा कम ही करते हैं लोग,
0: और जो कि हमें करनी चाहिए
2: अपने। जी जी
0: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: साथियों जब बात संस्कृति विविधता की हो तो हमारे प्यारे भारत से खूबसूरत मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और यूनेस्को भी भारत के इस विरासत की सराहना करता है, जहां कोस कोस पर अब पानी और बोली बदल जाती है, कहीं इडली सांभर का स्वाद है तो कहीं मक्के दी रोटी, कहीं गरबा की गूंज है तो कहीं बिहू की थाप। आज इस खास मौके पर आज के युवा संवाद का भी यही संदेश है कि अपनी संस्कृति और दूसरे की संस्कृति को पूरे दिल से सम्मान करें, क्योंकि हमारी यही विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही आधुनिकता की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं।

जारी भी बहुत है, लेकिन ग्लोबल भी होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन एक बात याद रखिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। हम आगे भी कॉल लेंगे, 73-76-80-40-90 डायल करते रहिए और एक छोटा सा अंतराल देते हैं।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत जो था फिल्म एयरलिफ्ट से। गाया था अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया था अमाल मलिक ने और लिखा था कुमार ने। साथियों, आधुनिकता की दौड़ में हम भाग रहे हैं और नए जमाने के साथ अपनी पहचान को भी बढ़ा रहे हैं, संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो आगे अपना आप कॉल मिलाते रहिए 73-76-80-40-90। लेकिन लेते हैं थोड़ा छोटा सा अंतराल।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर

0: थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: साथियों हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: तो मैडम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, रहने वाला अयोध्या मिल्कीपुर का हूँ, अवधेश कुमार।
1: अच्छा, रहने वाले आप अयोध्या के हैं और अभी आपने कॉल मिलाई है मुंबई से।
2: जी जी जी,
1: जी आपने अपना शुभ नाम क्या बताया?
2: अवधेश यादव।
1: जी, आज का हमारा विषय है युवा संवाद का, संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका। इस पे आपके क्या विचार हैं?
2: हेलो,
1: हाँ आवाज आ रही है मेरी?
2: जी मैं आ रही हूँ।
1: जी अवधेश जी, जैसा कि आप बताएं कि आप अयोध्या के रहने वाले हैं और मुंबई में अभी आप हैं, तो अयोध्या की संस्कृति और मुंबई की के साइड का माहौल, वहाँ की संस्कृति में तो आपको थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ?
2: जी, काफी बदलाव, हमारी मातृभाषा और पारिवारिक संवाद, संस्कृति से जमाने में भागीदारी, जैसे त्योहार से हर एक ऐतिहासिक स्थलों से भी हमारा जो बदलाव देखने को मिलता है।
1: जी,
2: और हमारे बुजुर्गों का अनुभव नहीं मिलता, अपने घरों से दूर रहता हो तो।
1: जी सही है, और वहाँ कुछ लोग जो आपके साथ वहाँ पे हैं, हाँ हाँ बोलिए।
2: तो हमारे त्योहार रहते हैं, अभी हमारे यूपी के जो त्योहार हैं और मुंबई के जो त्योहार हैं उनमें भी भिन्नता रहती है।
1: जी,
2: ये हमारी संस्कृति को, हम लोग को अपने संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, भूलना नहीं चाहिए। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वहाँ जैसे आप मुंबई में हैं तो आपके कुछ वहाँ के से जुड़े दोस्त तो आपके बने होंगे, तो क्या आप उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताते हैं?
2: जी जी बताते हैं।
1: और वहाँ से भी कुछ आपने सीखा वहाँ की संस्कृति से?
2: हम बताते हैं, हमारी यूपी में ऐसा त्योहार मनाया जाता है, हमारा त्योहार है।
1: जी, हम चाहे कितनी भी दूर चली जाए अपनी संस्कृति से अवधेश जी, लेकिन हम जुड़े रहते हैं अपनी संस्कृति से, जैसा कि अभी आपसे बात करके पता चल रहा है।
2: जी जी,
1: आपसे
2: संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, और जो बुजुर्ग लोगों का मतलब ज्ञान रहता है वो हमारे काम में बहुत आता है, उनका भी बातों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंतर्गत में भी आता है पैंतृक भाषा जो हमारी है, वो हमारे लिए बहुत काम करती है हमारे जीवन के लिए।
1: जी बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फोन मिलाते रहिएगा, धन्यवाद।
2: थैंक यू मैडम।
1: दोस्तों ग्लोबलाइजेशन जैसा हो रहा है और हम लोग भी ग्लोबल हो रहे हैं, अच्छी बात है, नए जमाने के साथ चलना जरूरी है, अपनी पहचान खोकर नहीं, ये याद रखिए। आज की युवा पीढ़ी कभी कभी अपनी भाषा बोलने में झिझकती है या अपने पारंपरिक त्योहारों के पीछे का तर्क नहीं समझ पाती, यहीं पर हमारी भूमिका शुरू होती है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दोस्तों। हेलो जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
3: सत्या सिंह बात कर रही हूँ, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
1: अयोध्या से बात कर रही है, अपना शुभ नाम फिर से बताइएगा।
3: सपना सिंह बात कर रही हूँ मैम।
1: करुणा सिंह?
3: सपना
1: जी। जी हमारा आज का विषय है संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका, तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे इस पे।
3: मैम संस्कृति उसे कहते हैं जो अपने देश में, चाहे वो पूजा पाठ हो या भाषाएं हो या वेशभूषा हो, इन्हीं जो रीति रिवाज प्राचीन काल से चली आ रही है उनको निभाना ही संस्कृति कहलाती है।
1: जी अच्छा, कोई ऐसी संस्कृति आप फॉलो करती हैं जो आपके यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही हो?
3: मैम सबसे तो गीत संगीत भी तो एक संस्कृति है ना, पूजा पाठ है, त्योहार है, ये सब तो हर कोई निभाता है, यही संस्कृति होती है।
1: अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आजकल एस्थेटिक का बड़ा क्रेज है, क्या आपको भी कैफे जाने से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक जगह, किले या प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और वहाँ जाके रील वगैरह फोटोग्राफी करती है? जी
3: क्योंकि पुराने लोगों से जिंदगी की सीख मिलती है मैम।
1: हाँ ये तो है।

0: हम अपने जब हम ऐतिहासिक चीज़ें घूमते हैं, जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने कैसे थे और हमारी संस्कृति कैसी थी, और वही चीज़ हम आगे भी बढ़ाते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। जी, तो आपको खाने में आज के फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है या जैसे जो हमारे पारंपरिक खाने होते हैं वो? हाँ, तो कभी घर में ऐसा कुछ होता है, बनता है कि जो पारंपरिक डिश मम्मी बनाए और उस दिन आप पेट भर के खाएं?
1: मैम कितनी भी अच्छी चीज हो, हम जितना ही खाते उतना ही खाते हैं, मेरी ओवर खाने की आदत नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कभी भी ओवर नहीं खाना चाहिए। तो सपना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करती रहिएगा।
1: मुझे भी बात करके अच्छा लगा मैम, बहुत शुक्रिया, नमस्कार,
0: धन्यवाद। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी कभी कभी अपनी भाषा बोलने में झिझकती है या अपने पारंपरिक त्योहारों के पीछे का तर्क नहीं समझ पाती। यहीं पर से होता है कि अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। संस्कृति का संरक्षण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रूढ़िवादी हो जाएं या पुरानी रूढ़ियों को ढोते रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी हमारी संस्कृति में खूबसूरत है उसे अपनाएं। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दोस्तों। हेलो,
2: हाँ नमस्ते मैम जी।
0: जी नमस्कार
2: जी, मैं जलालपुर से
0: जी,
2: डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर
0: से। रेडियो से थोड़ी सी दूरी बना ले पहले।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ मैडम जी बोलिए।
0: जी अब आप अपना नाम बताएं।
2: हेलो
0: हेलो, आप रेडियो से थोड़ी सी दूरी बना ले तो हमें आपकी आवाज मिल सकेगी और हमारी बातें हो सकेंगी। आप रेडियो से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए।
2: हाँ मैडम जी बोलिए।
0: जी आपका शुभ नाम?
2: जी मेरा नाम श्रवण कुमार है, जलालपुर से अम्बेडकर नगर, हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट पड़ती है,
0: अम्बेडकर नगर से बात कर रहे हैं। जी, और आज का हमारा विषय युवा संवाद का संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका, इस पे आपके क्या विचार हैं?
2: मैंने सांस्कृतिक जो है, जो हम लोगों का रस्म रिवाज धीरे धीरे पुराना वाला जो है धीरे धीरे मतलब खत्म होते जा रहा है, और नई पीढ़ी लोग नए हिसाब से मनाने के लिए उत्सुक है, और नई नई पीढ़ी लोग नए मतलब मनाने के लिए वो है, और जो पुरानी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और पुराने दौर में आने के लिए बुजुर्ग लोग समझाते भी है, लेकिन बस अपनी मनमानी सब कर रहे हैं। युवा वर्ग लोग जो चाह रहे वही कर रहे हैं मैडम जी, अब क्या किया जाए, जो कुछ हो रहा है। तो
0: अच्छा आप बताइए, आप कोई संस्कृति ऐसी है जो अभी आप उसे फॉलो कर रहे हैं?
2: हाँ फॉलो करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ हो नहीं रहा है, जैसे कि पहले के नियम के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन आ जा रहा है, तो उसमें हम लोग भी मजबूर है, एक आदमी दो आदमी दस आदमी तो कर नहीं सकते, जब तक एक साथ 150 आदमी गांव के लोग मिलकर जब तक ना करें, चाहे चंदा इकट्ठा कर, चाहे कुछ भी जो भी कुछ भी हो, जब तक इकट्ठित ना हो जाए तब लोग सबके मन में मिजाज एक जैसा ना हो, तो पुराने दौर के जाने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता मैडम जी।
0: हाँ ये तो है, लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते ना कि हम सब सभी को प्रेशराइज करें कि हाँ सब फॉलो करें, ऐसे हम खुद में बदलाव लाएं, हम खुद से फॉलो करें, क्या पता हमें देख के एक आध दो लोग उसे फॉलो करने लगे, क्योंकि आजकल तो फॉलो का ही जमाना है।
2: हाँ,
0: तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए और
2: तो
0: अपने घर में बदलाव
2: जाने के, हाँ,
0: जी जी जी जी हमें अपने घर में बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमारे आस पास के लोग देख के, अड़ोस पड़ोस के लोग, घर खानदान के लोग देख कर भी उस चीज को फॉलो करें, तो लोग करेंगे, धीरे धीरे चेन आगे बढ़ती है, छोटे छोटे कामों से ही चीजें बड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, और जैसे कभी आप बैठिए और अपने दोस्तों में बात करिए कि हाँ संस्कृति के बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो भी आप में रुचि लेंगे, और शायद नेक्स्ट टाइम वो कहीं बैठे तो उस चीज को फॉलो करें, वो उस चीज को बताएं कि हाँ संस्कृति ऐसी, हमारे खान पान ऐसे हैं और हमारे लोकगीत संगीत ऐसे हैं।
2: हाँ मैडम जी, आप जो बोल रही हैं ना सही बोल रही हैं आप, ऐसा करने से कम से कम जागरूकता पैदा होगी, शायद नए मतलब पुराने दौर पर जा सकते हैं लोग, लेकिन किसी के पास मैडम जी है ना कि मतलब देखिए जैसे कि जो चाह है उसके लिए अगर आप अडिग रहेंगे तो शायद सफल हो जाए इंसान।
0: जी
2: इसी पर अगर चर्चा की जाए 10-15 आदमी के बीच में, किसी के तो अंदर जाएगा, किसी के मन में तो विचार पैदा होगा।
0: जी बिल्कुल, वही वही वही कहने का मतलब है मेरा कि हम अपनी तरफ से चीजें करते रहें और उसे देख के तो कहीं ना कहीं तो बदलाव आएगा ही आएगा।
2: हाँ वो तो सही बात है मैडम
0: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। और ये मुहिम दोस्तों हमारे घर से ही शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम अकेले इतनी बड़ी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, तो दोस्तों शुरुआत हमेशा घर से होती है, बहुत छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

0: हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दोस्तों। हेलो,
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी हाँ, मैं अयोध्या जिले से हूँ।
0: अयोध्या से?
1: मेरा नाम रमेश सिंह है।
0: रमेश सिंह जी, कहाँ से आप? आज का हमारा विषय जानते हैं? हमारा विषय है संस्कृति संरक्षण में हमारी भूमिका।
1: संस्कृति संरक्षण
0: जी, तो इस पे आपके क्या विचार हैं?
1: मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृति संरक्षण जो है, नियमों का परंपराओं का पालन करना होता है और उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको संजो करके रखा जाए, नियमों में कोई परिवर्तन ना होने पाए।
0: जी, हमें सजो कर भी रखना होगा,
1: हमारी धरोहर है।
0: जी, हमें सजो कर भी रखना होगा,
1: सजो करके रखें
0: जी, आने वाली पीढ़ियों को भी बढ़ाना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी तरफ से चीजें अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और उन चीजों को हम करें जी। तो
1: हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है, तो इसलिए हमें इसको संजो करके रखना चाहिए
0: जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है,
1: सीखने को भी मिलता है
0: जी जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में या कहीं बाहर आप गए तो आप अपनी मातृभाषा बोलते हुए कभी झिझकते नहीं है?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो डिपेंड करता है अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि हमें कैसे बोलना है और हमारे सामने हमारे फ्रेंड सर्कल में हमसे वो कैसे बात कर रहे हैं।
0: ये बहुत से लोग होते हैं ना, अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलने में तो झिझकते थोड़ा, आज के युवा तो खासकर। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि हाँ, मतलब झिझकना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बोलना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है?
1: और साथ में अपनी संस्कृत को भी याद करते हुए अपनी संस्कृत को सजो करके रखना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहचान है और हमारे पूर्वज हमारे लिए बना करके इसको गए हुए हैं
0: जी।
1: तो उससे हम लोगों को एक बेनिफिट भी मिलता है और उससे हमारी एक पहचान भी होती है
0: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फोन मिलाते रहिए।
1: कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान कहीं भी आता जाता है, उस माहौल में उसको ढलना ही होता है।
0: हाँ, ये तो है। और ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद। चलते चलते बस दोस्तों इतना ही कहूँगी कि संस्कृति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए, इससे तो खुलकर जीना पड़ता है। जब तक हमारी भाषाओं में मिठास रहेगी, जब तक हमारे दिलों में बड़ों के लिए आदर रहेगा, तब तक हमारी संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और इसे अगली पीढ़ी को मुस्कुराते हुए सौंप दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। साथियों, कल चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। स्थान में जानेंगे कूड़ांक के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे वार्ता युवाओं में बढ़ता तनाव और समाधान। वार्ताकार होंगी शगुन विश्वकर्मा। और इसके बाद होगा आपका शब्दावली, साथ ही हीट वेव में जानेंगे कि कैसे हाइड्रेट रहें और धूप से बचें। साथ ही मनोरंजन के लिए होंगे गीत। इसी के साथ दोस्तों आशा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 और 35

0: लोकगीत। कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुनिए अरुण कुमार कोरी और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376-80-40-90 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, FM बैंड 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि

0: इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है। लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि इन नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and Maritime Stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed the commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अरिजीत सिंह चिन्मय सिरप्रदा की आवाज में आप सुन रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ गीत। संगीत है शंकर एहसान और लायका। फिल्म है टू स्टेट। फिलहाल इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम शाम सुहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मंत्रिमंडले 32 जनाः सम्मिलिताः, येषु 4 महिला मंत्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

0: स्वमन्त्रिसभायाः विस्तारः कृतः येन राज्य संयुक्त मन्त्रिसभायाः निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः कांग्रेस दलस्य द्वाभ्यां सह त्रयोविंशतिः नूतन मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः अनेन नूतनेन विस्तारेण मन्त्रिमण्डलस्य संख्या द्वात्रिंशत् यावद् वर्धिता यस्मिन् मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि अन्तर्भवति कांग्रेस दलम् अधुना प्रायः षट् दशकानाम् अनन्तरं राज्य मन्त्रिसभां प्रति प्रत्यागतः अस्ति सप्तषष्ट्यधिक नवशत शततम वर्षात् परं प्रथमवारम् एतत् राष्ट्रिय दलं तमिलनाडु राज्यस्य मन्त्रिमण्डले प्रतिनिधित्वं प्राप्नोति नवविस्तारित मन्त्रिसभायां चतस्रः महिला मन्त्रिणः अपि सन्ति केरल विधानसभायाः नवगठितस्य प्रथमसम्मेलनस्य आरम्भः अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे अभवत् जी सुधाकर इत्येषः नवनिर्वाचितान् सदस्यान् शपथं प्रदत्तवान् अध्यक्षपदस्य निर्वाचनं श्वः भविष्यति सत्तारूढेन UDF इत्यनेन तिरुवञ्चूर राधाकृष्णन् इत्येषः तस्मै पदाय नामाङ्कितः विधानसभायां भाजपा दलस्य त्रयः सदस्याः सन्ति अतः स्पर्धात्मक निर्वाचनस्य अपेक्षा वर्तते बी गोपकुमारः तस्य दलस्य अभ्यर्थी रूपेण घोषितः अस्ति किन्तु विपक्षः LDF इदानीमपि निर्वाचन विषये स्वस्य निर्णयं न उद्घाटितवान् इति पश्चिम बंगाल सर्वकारेण सम्पूर्णे राज्ये सर्वेषु मदरसा इत्येतेषु तत्क्षण प्रभावेण वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् अनिवार्यं कृतम् अयमादेशः मदरसा शिक्षा निदेशालयेन प्रसारितः अधिसूचनायाः अनुसारम् एषः निर्देशः सर्वकारीय प्रारूप मदरसा इत्येतेषु सर्वकारीय अनुदान प्राप्त मदरसा इत्येतेषु मान्यता प्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षा विभागस्य अन्तर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशु शिक्षा केन्द्रेषु माध्यमिक शिक्षा केन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमंत्री कुओन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम् IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितं चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थ स्थानं प्राप्तुं स्वस्य सम्भावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते अत्रांतरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः
1: FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 6:30 और 8 सेकंड हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम
1: बलराम यादव और साथियों की आवाज में सुनिए ये लोकगीत

रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान बाड़ी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी अरे पहली वाली बात कहाँ
2: परम तो सभी डाले
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: पंचों जय हिंद। ओम भैया।
4: हाँ प्रकाश भैया,
3: देखा अपने सभी आए गए सजीव फोन इन कार्यक्रम के साल हेल्पलाइन लेके, और आज के जो विषय है जायद में सब्जियों और बागवानी में प्रबंधन कैसे की जाए।
4: हाँ जेमा पंचे फोन करके अपने समस्या का समाधान करते हैं, और आज अपने कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ भैया है ना, वो सब्जी और बागवानी दोनों के विशेषज्ञ हैं, और दोनों के बारे में पंच जानकारी ले सकते हैं। यस मौका हमेशा नहीं आवत है, कम मिलत है। और जो विशेषज्ञ भैया हैं डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया हैं, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष KVK मसौदा यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से अपने कार्यक्रम में आए हैं। और ये कार्यक्रम अपन चली 6:45 से 7:15 तक। पंच हमारा फोन करके अपने समस्या का समाधान करें। जो हमारा फोन नंबर है
3: 73-76-80-40-90
4: 7376-80-40-90 पंच के फोन के हमें इंतजार है। और डॉक्टर भैया के जो उन्होंने कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं, आपके स्वागत है कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
4: डॉक्टर साहब। मौसम इस समय देखें बहुत हर क्यों परेशान है, ये बढ़ते तापक्रम से हर क्यों परेशान है, और सब चाहे आदमी हुए, चाहे पशु पक्षी है, चाहे जानवर हैं, और इसके अलावा पेड़ पौधा भी व्याकुल हैं, क्योंकि नमी भले ही है लेकिन ये जो गर्म हवा चल रही है ऊपर से नमी बहुत तेज खींच रही है। ऐसे मौसम में जोन हमारे खेतन में बाग में पेड़ पौधा हैं, उन्हें हमें कैसे बचावे का चाहिए।
5: किसान भाइयों देखिए, ये मई का महीना चल रहा है और हमारा तापक्रम लगभग 45-40 से ऊपर ही चल रहा है, और देखिए लू और ज़्यादा गर्मी के कारण हमारी जो सब्जी वाली फसल है, चाहे इस समय देखेंगे कद्दू बरगी है, लौकी है, करेला है, खरबूज है, तरबूज है, भिंडी है, लोबिया है, ये सारी फसलें इस समय किसानों के खेत में है, बैगन है, मिर्च है, तो इसमें सिंचाई का प्रबंधन आप अवश्य करें, क्योंकि गर्मी में 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करना है। और साथ साथ किसान भाई, जिसने आपने लौकी है, करेला है, अगर आपने मचान नहीं दिया है तो उसके नीचे आप खरपतवार से मल्चिंग आप अवश्य कर दें। मल्चिंग करेंगे तो उसमें नमी का संरक्षण होगा, जो अनावश्यक
4: खरपतवार के ऊपर जितना खरपतवार जमा है ओकरे ऊपर चाहे सूखी घास है, पुआल है या पन्नी डाल दी जाए।
5: हाँ तो ये सूखी पुआल है, आपके पुआल है या गन्ने की पत्तियां हैं, और खरपतवार भी आपके पास अगर सूखी है तो उससे आप मल्चिंग अवश्य कर दे, तो उससे क्या होगा कि नमी संरक्षण, खरपतवार भी नहीं निकलेगा, और जब नमी रहेगी तो हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो आप टमाटर की फसल आप देख रहे हैं उसमें फूल आएगा लेकिन फूल गिर जाएगा। जहाँ 35 से ऊपर टेम्परेचर तापक्रम जाता है उस समय टमाटर में समस्या आ जाती है कि फूल आएगा, गिर जाएगा, तो नमी संरक्षण करें। और साथ साथ इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों की जो फसल होती है तो उसमें सब फसली आप अवश्य लें, जैसे अभी गन्ना है, गन्ना काफ़ी क्षेत्र है, तो इस समय गन्ने में देखिए अभी क्या होगा कि खीरा का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें मादा फूल कम आएंगे, नर ज्यादा आएंगे
4: जी।
5: तो जब गन्ने के साथ सब फसली आप लेंगे तो उसमें 3 से 4 डिग्री तक आपका तापक्रम कम हो जाएगा।
3: देखा ओम भैया, अपने पंच एक फोन लाइन पे पहले बताइए, कह लूंगा। हेलो
6: हेलो।
3: हाँ भैया, अपन नाम बताओ।
6: हेलो
3: भैया, अपन नाम बताओ आप। हेलो भैया, आकाशवाणी आप फोन मिलाए हो ना।
6: हाँ हाँ
3: हाँ भैया बतावा, आप अपन नाम बतावा।
0: बालक राम वर्मा।
3: अच्छा, कहाँ जाना चाहते हो डॉक्टर?

0: भैया से पूछो। और भैया जहाँ बैठा हो बाजा चल रहा है।
1: बालकराम वर्मा
0: भैया जहाँ बैठा हो बाजा से हट जाओ, जहाँ आप बैठा हो लगा तो टीवी चलत है, तो अपने तक कैसे आपके संदेश आए जो उन पूछा चाहत हो भैया? हाँ वहीं से हट के आप बात करो, बताओ भैया आप।
1: बालकराम वर्मा बात।
0: हाँ भैया आप अपन समस्या बताओ, डॉक्टर भैया सुनत है।
1: गन्ना में ये सब खाद डाले चाहिए
2: नहीं? किसान भाई गन्ने में इस समय गुड़ाई करके खाद दे करके उसमें पानी अवश्य चला दें, ये ध्यान दीजिए।
0: बालक राम भैया कुछ और पूछा चाहत हो?
1: नहीं सर धन्यवाद।
0: ठीक है भैया,
1: ट्राई करते हैं, लग गया नंबर।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसे लगा हुआ करो, है ना
3: जी। बात चलत रही कि जो उन खेतन हमारे फसल है ये मौसम में कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए?
2: तो देखिए किसान भाई पहले तो सिंचाई की व्यवस्था है नमी शरण से, और साथ साथ जब आप आपको करेला खीरा लौकी की तुड़ाई कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग करना पड़ता है, तो आप जल विरयक उर्वरक आता है जैसे एनपीके आता है 18-18-18 या 19-19-19 एक किलोग्राम 150 लीटर पानी में घोल बना करके एक एकड़ क्षेत्रफल में 10 से 12 टंकी आप कर दें तो हर दूसरे या तीसरे तुड़ाई के बाद आप इसमें अवश्य स्प्रे कर दें, तो जिससे हमारा फसल में क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और जो हमारा रासायनिक खाद है वो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी।
3: तो ये तरह से हम अपने फसल के
0: पंच अपने सबके साथ हैं, पहले उनसे बात कही कह ली जाए। हेलो हेलो भैया अपना नाम बताओ।
4: यू आर स्पीकिंग विद हैव
3: फोन हमें लगा था इनके कटिगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक तो आप बतावागा जो उन खेतन हमारे फसल है उनके बराबर सिंचाई करें और मल्चिंग के द्वारा उनके नमी के संरक्षण करने की जरूरत है, साथ ही साथ समय समय पर जब 2-3 तुड़ाई हो जाए तो ऊपर खाद के
2: स्प्रे कर
3: भी जरूरी है। जोन आगे के हमें तैयारी भी है वह तो करेक है, जैसे कि खरीफ में हमें तमाम सब्जी के फसल ले रहा थे, जायद में हर क्यों नहीं ले पाओ थे फसल, लेकिन खरीफ के तैयारी और अब से पंच शुरू के दिन है, तो खरीफ में हम कौन कौन फसल के यही समय तैयारी कैसे?
2: देखिए किसान भाइयों जो हम खरीफ में अब बुआई करेंगे जून में तो उसमें कद्दू वर्गीय में लौकी करेला खीरा और आपका भिंडी लोबिया ये बुआई करेंगे, और अगेती फूल गोभी की नर्सरी जो हम मई लास्ट में आप तैयारी करेंगे, और नर्सरी का विशेष ध्यान है कि नर्सरी अगर सही तरीके से अगेती फूल गोभी की तैयार कर लेंगे तो आपको जो बाज़ार में हमारी अक्टूबर नवंबर में आती है सितंबर में हमारी गोभी की फसल बाज़ार में आ जाती है जिसे अगेती फसल कहते हैं और उसका बाज़ार में आपको अच्छा दाम मिल जाता है।
0: देखा डॉक्टर भैया एक फ़ोन है आपके साथ जुड़ा चाहते हैं। हेलो भैया बताओ मैं अपन नाम बताओ मैं भैया अपन नाम हाँ कोने गांव से बोले थे भैया अच्छा भैया समस्या बताओ आप डॉक्टर भैया सुनत हैं बताओ भैया आप का पूछा चाहते हैं भैया बताओ मैं
5: दूसरा रोग लगा है
2: कौन सा रोग लगा है आपका
5: झुलसा
2: तो देखिए ये झुलसा के लिए कार्बाबेंडाजिम प्लस मेनकोजेब का ये घोल आता है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर दें
3: जी। तो बात होत रही कि खरीफ में जो सब्जी हमें लगावे के तो जो नर्सरी डायरेक्ट है डॉक्टर साहब जैसे गोभी के नर्सरी डायरेक्ट है तो एक एक कब डाला जाए और कैसे डाला जाए कि हमारी नर्सरी अच्छी हुए?
2: देखिए किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जैसे ही हम नर्सरी डालना हो तो इस समय अगर हम मई के लास्ट में हम नर्सरी डालते हैं इस समय उसमें गुड़ाई कर दीजिए, अगर हमारा 10 बीघे का में अगर लगाना है चाहे 1 एकड़ में लगाना है तो 100 वर्ग मीटर हमारी नर्सरी की आवश्यकता होती है कि इतने एरिया में उसकी गुड़ाई करके उसमें सड़ी गोबर की खाद या हल्की सिंचाई कर दें, या तो आपके पास जो स्प्रे वाली मशीन होती है जिसमें दवा छिड़कते हैं उसको धुल कर

0: के और उसमें फुहारा तीन चार टंकी मार दीजिए और चारों तरफ से पन्नी, एक सफेद पन्नी आती है 200 गेज की, उसको ऐसा दबाएं कि हवा का संचार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए। उसमें क्या होता है कि जो हमारे हानिकारक कीट एवं बीमारियां, और खासकर जब हम नर्सरी लगाते हैं तो खर पतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
1: डॉक्टर भैया देखें, एक पंजाब से जुड़ा चाहते हैं। हेलो भैया, आप नाम बतावें आप।
2: से बोल रहे हैं सर।
1: अच्छा अच्छा भैया, नाम बताए दें अपन।
2: राम किशोर प्रजापति।
1: अच्छा अच्छा प्रजापति भैया, अपन समस्या बतावे, डॉक्टर भैया सुनत है।
2: हाँ साहब, उर्द बोए हैं, उसमें कहीं कहीं फूल आ रहा है, उसकी सिंचाई करें कि नहीं करें?
0: देखिए, अभी फूल आ रहा है तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल भराव की स्थिति ना हो। अगर ज़्यादा पानी भर देंगे तो हमारी उड़द की फसल खराब हो जाएगी, तो हल्की सिंचाई करें, चूंकि नमी खेत में नहीं है तो हल्की सी सिंचाई उसमें अवश्य कर दें।
2: नहीं सर, उसमें नमी तो नहीं है, साग एकदम नमी नहीं।
0: हाँ तो नमी नहीं रहेगी तो हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। फूल अगर 5-7% है तो हल्की सिंचाई आप अवश्य कर दीजिए।
2: जी जी जी साहब, नमस्कार।
1: ओम भैया देखो, एक बात हम बताओ, चलिए अपने पंचन का सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन चलत बाटे और आज के विषय है जायद में सब्जियां और बागवानी के कैसे प्रबंधन किए जाए। विशेषज्ञ भैया अपने सबके बीचे में हैं, डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से, और पंचे 73-76-80-40-90 पर अभी काफ़ी समय है, 7:15 तक फ़ोन कर सकते हैं, 7:15 तक, और जौन समस्या है वो का पूछ सकते हैं।
3: जी डॉक्टर साहब, अपने यहाँ ज़्यादातर पंच रबी माँ गोभी के खेती करते हैं, लेकिन अगर यह समय गोभी खेती की जाए खरीफ माँ, तो हमें का कुछ विशेष ध्यान भी रखने की जरूरत है?
0: तो देखिए किसान भाइयों, जो हमने बात कर रहे हो कि नर्सरी पे ध्यान देना, दूसरी चीज है कि प्रजातियों का चयन। जो अगर हमारी मई वाली प्रजाति है, जैसे सबौर अग्री में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से प्रजा काशी कुआरी है, काशी अगेती है, तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो मई के महीने में आप बुआई करेंगे। नर्सरी अगर प्रजाति लेट वाली पहले लगा देंगे, अब पहले वाली बाद में लगा देंगे, उसमें क्या होता है तो फूल नहीं आता है
3: जी।
0: तो ये ध्यान देने की है कि नर्सरी लगाएं तो उस मई वाली प्रजाति का चुनाव करें, और चुनाव करने के बाद देखेंगे कि हमारी गोभी की फसल 55 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी से जब हम रोपाई करते हैं 20-25 दिन में नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है, उसके बाद रोपाई करते 55 दिन बाद 60 दिन में हमारी मार्केट में गोभी जाने लगे।
1: देखिए डॉक्टर भैया, एक पंच है अपने सबके साथ। हेलो
4: हेलो।
1: हाँ भैया, अपन नाम बतावें।
4: राम सूरत रायपुर से बोलते हैं, जिला अयोध्या से।
1: अच्छा भैया स्वागत है कार्यक्रम में, बताओ आप समस्या बताओ।
4: राम सूरत रायपुर जिला अयोध्या।
1: हाँ भैया आपके स्वागत है कार्यक्रम में, अपन समस्या बताओ डॉक्टर भैया।
4: अरे उसमें फूल अब आने लगा है, क्या दवा, कौन सी दवा डालें?
0: देखिए किसान भैया, अगर आप उर्द में देख रहे होंगे कि पत्तियां अगर काट रही होंगी तो जाली टाइप
4: फूल आने लगा है। फूल
0: लगा है ना, अभी लगा है कि नहीं?
4: आने लगा है।
0: आने लगा है तो आने लगा है तो आप हल्की कीटनाशक दवा आप डाल सकते हैं, वो मोनोक्रोटोफास या क्विनालफास, दोनों में से कोई एक दवा 1.5-2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके
4: आप पहले एक दवा और टॉनिक डालेंगे सर।
0: हाँ तो उसके साथ आप एक NPK आता है, आप 18-18 मिला लीजिए या 0-52-34 मिला दीजिए, उसका 1 kg 150 l पानी में घोल बना करके आप उसमें छिड़काव करें
3: जी। डॉक्टर साहब, ये गोभी हमें सबका का मेढ़ पर या ऊंचाई पर लगाने की जरूरत है?
0: देखिए किसान भाइयों, ये अच्छे सवाल है, कभी भी रेज बेड पे आप लगाएंगे, चूंकि बारिश वाले सीजन हो जाती है, तो अगर हम खुले खेत में समतल पे लगा देते हैं तो जहां जल भराव होता है तो हमारी गोभी की फसल गल जाती है और ख़राब हो जाती है। तो रेज बेड सिस्टम पे मेड़ पे आप लगाएं, जिससे कि हमारी बारिश होती है तो जल निकास की व्यवस्था उसमें अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी गोभी की फसल ख़राब हो जाती है
3: जी। डॉक्टर साहब, पंच का हमेशा इच्छा रहा था कि हम सब्जी के खेती करी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुए हमें, और ख़ास करके सब्जी की खेती का पंच नगदी फसल के रूप में भी लेते हैं। सूरन की खेती अपने यहाँ कैसन रही और कब की जा सकती
0: है? देखिए किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और अयोध्या जनपद में सूरन की खेती की संभावनाएं बहुत हैं, और किसान कर भी रहे हैं। अगर सूरन का किसी ने, वैसे तो हमारा मार्च से

0: मई तक जून तक हम लगाते हैं। जिस किसान भाइयों ने अभी तक सूरन की खेती करना चाहते हैं, अभी भी समय है कि सूरन की बीज की व्यवस्था कर लें। जैसे दो प्रजाति हैं, गजेंद्रा है, श्री पद्मा है, ये दो प्रजाति है और इसकी लगाने का समय अभी भी चल रहा है
1: जी।
0: तो अगर हम एक एकड़ क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग हमारा 15 से 20

0: खेत की जुताई करके जब आखिरी जुताई करें, समतलीकरण करें, तो उस समय आप 150
1: लौटी थे पर देखें फोन आएगा है।
2: हेलो, हाँ भैया अपन नाम बतावें आप। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ भैया अपन नाम बतावें आप।
3: हाँ सर,
2: नाम
1: अपन नाम बतावें, नाम कहाँ से बोलते हैं?
3: अरुण कुमार बोल रहे थे, धनिया।
2: अच्छा, समस्या बतावे डॉक्टर भैया, सुनत है
3: सर, हम धनिया लगाए थे, धनिया खेती किए हैं।
0: जी जी,
3: पत्तियां पीली पड़ जा रही है सर, उसके लिए कोई दवा है?
0: देखिए, चूंकि ये मौसम आप देख रहे हैं धनिया का, अब आप सीजन हो रहा है कि धनिया की फसल जब तापक्रम बढ़ता है तो पीलापन आता है। अगर हल्का सा शेड नेट रहता है तो उसमें हरापन रहेगा। अगर आप इसमें क्या करिए कि जो फसल है पीला पड़ रहा है तो उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर आपका कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब और उसमें एक साथ मिला लीजिए NPK 18 18 18 NPK जल विलेयक उर्वरक होती है NPK।
3: अच्छा,
0: 18 18 18 चूंकि बेमौसमी जब हो जाती है तो हमारा तापक्रम बढ़ने के कारण भी पत्तियां पीली होती हैं, सिंचाई हल्की नमी नहीं होती उस कारण भी होती है, और कभी कभी हल्का सा होता है तो उसमें हमने कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब 2 ग्राम और इसके साथ NPK 18 18 18 का हमने बताया जल विरक है, और ये 1 एकड़ के लिए आप 50 ग्राम प्रति टंकी 30 ग्राम वो डालिए और 50 ग्राम ये एक टंकी में घोल बना करके आप छिड़काव कर लीजिए।
3: ये समस्या और है सर।
0: हाँ,
3: उरद बोए हैं सर, उरद और मूंग बोए हैं।
0: हाँ,
3: नील गाय पूरा चर ले रहे हैं सर, ढैंचा भी बोए थे, नील गाय पूरा चर लिए हैं, उसके लिए कोई विकल्प है सर? नील गाय,
0: देखिए नील गाय के लिए तो आपको तार बाड़ की आवश्यकता है कि चारों तरफ से खेत के वो करें। अगर हम वो कहें कि 2-4 दिन के लिए आप कर सकते हैं नील गाय जो उसकी खेत के चारों तरफ सल्फर का भी स्प्रे करते तो वो 2-4 दिन के लिए रहता है, लेकिन तार बाड़ अवश्य घेर बाड़ करके आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं।
3: हर हफ्ते हम डलवा दें सर,
0: तो हर हफ्ते तो उसकी, हाँ तो उसकी खुशबू रहती है तो थोड़ा कम आएंगी, क्योंकि इस समय खेत चारों तरफ खाली है तो आपका जहाँ हरापन दिखता है तो वहीं पे नील गाय पहुँच जाती है। ठीक है,
3: तो कौन से दवा बता रहे हैं सर?
0: जैसे नील गाय जो आपके नील गाय गोबर करती है ना
3: जी,
0: उसको भी घोल बना करके खेत के चारों तरफ आप छिड़काव कर दे तो इसके लिए भी उसकी मांग से वो कम आती है, लेकिन घेर बाड़ करना हो सकता है, ये परमानेंट इलाज आपका नहीं है।
3: ठीक है, तो सर लेकिन 5 फीट कूद जाते हैं।
0: हाँ, ये तो यही है कि ताल बाड़ घेर बाड़ आपको करना पड़ेगा थोड़ा।
3: थैंक यू
1: सर। अच्छा सर, जैसे बतावागा कि मेनकोजेब धनिया में डालने के लिए देसी उपाय भी कुछ है?
0: देखिए, देसी उपाय है, अगर आप ये करते हैं तो नीम आयल है
1: जी,
0: और जीवामृत है, घन जीवामृत है जो प्राकृतिक बीज से करते हैं, तो इसका भी हम जीवामृत का कर सकते हैं।
1: पंच का कोशिश करनी चाहिए कि देसी उपाय ज्यादा करें, क्योंकि अब धनिया है, हरी धनिया बोए हैं तो अगर खाए के उपयोग में आवत है तो सब्जी में, और हमें लगा था जो सीधे उपयोग हो के हमें देसी उपचार ही करें।
0: वो नीम आयल अगर 2-3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, और जीवामृत घन जीवामृत का आप स्प्रे कर दे तो इससे भी हमारा कम होगा, और हल्का सा चूंकि नमी बनाने के लिए ऊपर से फुहारा से आप सिंचाई भी कर दे।
1: कैसे कहते हैं इस तरह से हम अपने फसल के बढ़िया से देखभाल कर सकते थे, और हमेशा पंच से हम यही कहे कि सब्जी की फसल में फल में जब लगा हुए सब्जी लगी हुए और फल लगा हुए अवमन को इस तरह समस्या हुए तो देसी उपचार ही करें।
2: देखा एक बार ओम भैया, तब तक हम पंचन का बताए दी कि आज सजीव फोन इन कार्यक्रम अभी समय है, किसान हेल्पलाइन चलत बाटे 73 76 80 40 90 पर, कोनो भी समस्या अगर जायद में सब्जी और बागवानी के संबंध में तो अपने पंचे भाई जानकारी ले सकते हैं। देखो जानकारी की बात है, एक फोन आया हुआ है। हेलो,
3: हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार।
2: भैया नमस्कार, अपन नाम बता दो, कहाँ से बोला थो?
3: सर मेरा नाम विजय प्रताप है, ग्राम औरंगाबाद जिला बस्ती से।
2: अच्छा, तो स्वागत है, अपन समस्या बताओ डॉक्टर भैया का।
3: अनार का पेड़,
2: बाजा से दूर हो जाओ भैया, थोड़ा सा खुले जगह पे आओ, नेटवर्क में आ जाओ भैया।

0: है ना?
1: हमारे 2 साल का अनार का पेड़ हो गया तो खर्चा बहुत है। लेकिन उसमें बारीक जैसा छेद हो जाता है, मतलब बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा।
0: अच्छा, देखिए अनार का पेड़ है, फलता बहुत है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। हेलो
2: भैया, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आओ, कहूँ बाहर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँचत बाटे, थोड़ा सा खुले में आओ।
3: बताओ।
0: हेलो,
1: आपकी आवाज आ रही बराबर?
0: हाँ बताइए।
2: हाँ बोलो भैया।
1: जी सर,
0: बोलिए बोलिए बताइए
1: सर। मतलब मेरे 2 साल का अनार का पेड़ हो गया है तो जी? सर फरता बहुत है, आज भी बहुत खड़ा हुआ है।
0: जी जी, जी।
1: बारीक जैसा छेद हो जाता है।
0: बारीक छेद हो जाता है तो छेद हो करके अंदर आप देखते हो?
1: फर्क नहीं पड़ा।
0: दवा मारे थे?
1: एक दो बार दवा मारी, मतलब इन कोई फर्क नहीं पड़ा।
0: तो जो भी दवा मारे हैं कीटनाशक का, एक कीटनाशक जो मारते हैं उसके बाद दूसरा कीटनाशक बदल के अवश्य मारे उसमें। अगर मान लीजिए मोनोक्रोटोफास किए हैं तो अगला बार क्विनाल फास कर दीजिए, क्विनाल फास कर दिए तो इमिडाक्लोपीड आती है वो क्या है, या थायोमेक्सेसाम आता है। कोई भी एक दवा एक बार में नहीं यूज करिए, दवा बदल के करिए। और जहाँ तक आप देखते हैं बागवानी की फसल है, इस समय आम की फसल लगी हुई है, इसमें फल मक्खियां ऐसे में बहुत आती हैं, मक्खी अंदर घुस जाती
1: है। आम का पेड़ है वो तो ठीक ठाक खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो उसमें एक हाँ, तो उस समय इस समय देखिए आम में आपको फल मक्खी आएगी, तो उसमें भी आप एक आता है कि फिरोमोन ट्रैप आता है, तो उसमें मिथाइल यूजनाल होता है। अगर आप 4 भाग मिथाइल यूजनाल, 6 भाग अल्कोहल और 1 भाग थायोमेक्सेसाम का घोल तैयार करके, लकड़ी का गुटका आप तैयार करके छोटी सी उसमें डीप कर दीजिए, और डीप करके आप बोतल है 2 लीटर की जो आती है उसको आप चारों तरफ से थोड़ा काट करके और बीच से उसको लटका दीजिए, नीचे हल्का पानी भर दीजिए, तो जो हमारा उसमें मादा का स्पेल निकलता है तो नर कीट आता है तो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह आप लगवा दीजिए, ठीक है
1: जी सर।
3: अच्छा भैया, जो अनार आप कहे उन्होंने छेद किए हैं का फोड़े पर कुछ
1: और कुछ फरता बहुत है, बहुत फरता है।
3: हाँ, उमन कीड़ा वगैरह अंदर कुछ दिखा था जो उन छेद किए है?
1: कीड़ा नहीं दिखा रहा, सिर्फ बारिश का सुई जैसा छेद छेद दिखा
3: है। नहीं, अंदर अंदर अंदर अंदर फल में कोनो दिक्कत लगत है, जो है काला होएगा हुए कीड़ा हुए कोई बात?
0: काला पड़ा रहता है, ऊपर से स्पॉट पड़ा रहता है काला काला है?
3: हाँ, अंदर तक नहीं पहुंचा है
0: तो उसमें आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसमें घोल बना करके आप छिड़काव कर दीजिए।
1: जहाँ
0: बीज
1: भंडार
0: से लाके
1: चाहते हैं, मतलब
0: आप
1: दवाई के नाम बताएंगे तो दे देंगे ना?
0: हाँ दे देंगे, वहाँ पे आप बीज भंडार पे चले जाएंगे या इफ्को पे, तमाम इफ्को का है वहाँ भी बताएंगे तो आपको मिल जाएगा।
3: जी, बात होत रही सूरन। सूरन सूरन के बात हम सब करते हैं, तो सूरन कब बोया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है डॉक्टर साहब, 1 मिनट में।
0: देखिए सूरन का इस समय बुआई कर दीजिए, और हमने जहाँ तक बीज की बात की है तो 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और 6 से 8 महीने में हमारी सूरन तैयार हो जाती है। जैसे ही दीपावली का समय होता है उस समय, अगर 1 एकड़ में हम बात करें तो हमारा लेकर के 200 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ हमारा उत्पादन मिल जाता है। और सूरन में ये देखिए कि जब बुआई कर दें तो उसमें गड्ढे की जो खुदाई करें, जो दूरी रखें करीब 2 फीट कतार से कतार, और पौध से पौध की दूरी हमारा 1.5 से 2 फीट की दूरी,
3: मतलब सूरन का नकदी फसल के रूप में हम बो सके थे।
0: हाँ, किसान भाई बो सकते हैं।
2: फोन है
3: जी,
2: पहले डॉक्टर भैया एक फोन लाइन पे अपने पंच हैं। हेलो
4: हेलो।
2: हाँ भैया, अपन नाम बता दो, कहाँ से बोला थो?
4: नरेंद्र वर्मा बोल रहे हैं, अयोध्या लीला पुरवा घर है हमारा।
2: हाँ भैया, अपन समस्या बताओ, समय होत बाटे।
4: अमरूद लगाया हमने 2 बीघा, उसमें जैसे इधर बरसात वाली फसल फल आ गए हैं, बहुत फल आए हैं, उसमें कुछ फल तोड़ दें हम, और कीटनाशक के लिए जो कीड़े बरसात वाले ज्यादा लगते हैं उसके लिए क्या करें?
0: देखिए दो चीज है, कीड़े लगते अगर रासायनिक छिड़काव करते हैं तो उसमें एमिडाक्लोपीड आती है 17.8 SL का, 1 ml 2 लीटर

0: पानी में घोल बना करके जो फल मक्खी ज़्यादा आती है उस पर। दूसरा स्पाइनोसेड आता है 45 ईसी का, इसका 50 से 60 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया था, अभी आप सुने होंगे, फिरोमेन ट्रैप लगाइए। फिरोमेन ट्रैप आता है और उसको एक एकड़ में 6 से 7 जगह पे आप लगा देंगे तो हमारे जो फल मक्खी होंगे उसमें काफी पॉपुलेशन करना हो तो फिरोमेन ट्रैप का अमरूद में अवश्य प्रयोग करें आप।
1: जी, और सर उड़द हमारा जो है फूल आ रहा है, कहीं कहीं फलियां भी आ रही हैं।
0: जी जी,
1: तो उसपे जो है कीटनाशक हमने डाल दिया है।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा है।
1: और अभी जो है 20-20 एनपीके लाए हैं हम, उसको भी छिड़क सकते हैं क्या?
0: कौन सा लाए हैं आप एनपीके?
1: एनपीके 20-20।
0: हाँ, तो स्प्रे कर दीजिए उसमें 1 किलोग्राम 1.5 लीटर पानी में 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए आप स्प्रे कर दीजिए उसको।
1: एक टंकी में कितना डालें?
0: एक टंकी में 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी।
1: 50-60 ग्राम,
0: 5 ग्राम प्रति, करें 5 से 7 ग्राम पर प्रति लीटर पानी में आपको। ठीक है,
1: अभी सर उसमें हमने प्लानो फिक्स डाला था 4 ml पर टंकी के हिसाब से। तो
0: आप
1: लोग बताए थे।
0: हाँ, तो 20-20 का आप जो लाए हैं वो कर सकते हैं।
1: जी ठीक
2: है,
1: धन्यवाद।
2: डॉक्टर विनायत प्रताप शाही भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पंचन के जितना फोन आवा उनका बहुत अच्छे ढंग से उनके समाधान कीनगा और हम सभी पंच की तरफ से तमाम चीजें पूछें वह का बहुत अच्छे ढंग से आप बतावागा। उम्मीद करी थे जैसे आप बताइन हैं हमारे पंच वही तरह से अपने सब्जी के खेती के बागवानी के प्रबंधन करी हैं और आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ये कार्यक्रम के दुखा ओम भैया, प्रस्तुति रही संजय धर द्विवेदी भैया के, और ये हेमंत तकनीकी सहयोग जो अपने सबका मिला है वो स्वप्निल जी के मिला बाटे, और जल्दी से अपने सबका मौसम के हाल जोन है वो का पंचन का बता दीजिए।
2: आज के जोन आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से मौसम के हाल मिला है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, सापेक्षिक आर्द्रता 79% रही और न्यूनतम 42% रही। हवा के गति 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिशा दक्षिणी पश्चिमी रही।
3: पूर्वानुमान यही है कि आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रह के और साथ ही साथ लू चले के और सामान्य गति से पश्चिमी पूर्वी चले के और औसत तापमान जो है कुछ बढ़े की संभावना है। अपने सबका सचेत रहे है।
2: और जो मंडी से बाजार भाव मिला है योग बता दी जाए।
3: हाँ, जल्दी से अपने पंचन का बता दी जाए। नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से चावल कामन 3040 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, गेहूं दड़ा 2585 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2390 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द दाल काली 9270 रुपये,
2: चना देसी 6400 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7085 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर की दाल 10950 रुपये, आलू सफेद 725 रुपये, प्याज लाल 1200 रुपये और टमाटर 2270 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
3: लहसुन 6950 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई 2100 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 1530 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 2225 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3700 रुपये प्रति क्विंटल,
2: कद्दू 1370 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 6000 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 3020 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1585 रुपये, करेला 1500 रुपये, केला पक्का 2700 रुपये, नींबू 7900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
3: यही में पपीता 2675 रुपये प्रति क्विंटल के पाछे, सेब 11400 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 8200 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5070 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी 4165 रुपये प्रति क्विंटल।
2: अब देखें यही के साथ है, पंच से विदा लिए के समय आएगा है, तो पंचो ओम
3: और प्रकाश का दें अनुमति।
2: जय हिंद।
4: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिले गजल और 9:30 से सचिव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश। 8:30 से कार्यक्रम होगा प्रणाम अयोध्या, जिसमें आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा, उग्रसेन मिश्र की वार्ता, अवध क्षेत्र की महान विभूति आचार्य नरेंद्र जैन। 9:00 से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 12:30 से कुछ तुमने कहा कार्यक्रम दोपहर 1:00 से। 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम अंगना, जिसमें आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा, कवयित्री कात्यायनी उपाध्याय का काव्य पाठ, विषय है जीव है जग का आधार, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष और दिलों में बसता है राष्ट्रगीत। युवाणी का समय होगा शाम 5:00। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर होगी चर्चा, स्थान सेगमेंट में जानेंगे कोणार्क के बारे में, सगुन विश्वकर्मा की वार्ता सुनेंगे, विषय युवाओं में बढ़ता तनाव और समाधान। 6:30 से कार्यक्रम गोजेश्वर गांव के और 6:45 से कार्यक्रम होगा कृषि जगत, नशा नाश की जड़ है विषय पर होगी चर्चा, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सहायक प्राध्यापक मत्स्य पालन डॉक्टर शशांक सिंह की वार्ता आप सुनेंगे, मत्स्य पालन के लिए नए तालाब का निर्माण। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 7:20 होने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन, प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा, कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
4: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और SP सिंह

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान बाड़ी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र

0: को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
2: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते हुए उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के हैं, भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते 4 दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीट वेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
4: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थाई हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं, जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
1: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा।

0: में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लम्हे फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और शिव हरी का संगीत। लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म से ये अगली पेशकश। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, शिव हरि का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

से मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर।

0: दोस्तों इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है?
1: म्यूजिक ही करते रहना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ऐसे गोल नहीं है। म्यूजिक से जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रह के जितना कर सकता हूँ उतना करना
0: जी। तो जो भी आपने सोचा है उसके लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी, आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद सीधे तो म्यूजिक की तरफ बढ़े नहीं होंगे?
1: हाँ, तो
0: और जैसे आमतौर पे हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता घर में ये उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री कर ली भाई, अब कोई नौकरी करो या कोई अपना व्यवसाय करो,
1: राइट,
0: है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आपके सामने, आपके लिए भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा। आपसे भी उम्मीद की जा रही होगी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: उस उम्र में
1: एक्चुअली हुआ ऐसा था, इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होती है
0: जी जी,
1: तो तब मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था। लेकिन उसका जो ज्वाइनिंग था वो पुश हो गया था, 6 महीने से या आई थिंक 1 साल से पुश हो गया था तब।
0: अच्छा।
1: तो जुलाई में पास आउट हुए और फेब में ज्वाइनिंग आने वाला था, ऐसा कुछ था तभी। तो 6 महीने फ्री था और कॉलेज में एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक में कुछ करना है।
0: अच्छा।
1: लेकिन तब, क्योंकि मैंने तभी सीखना भी शुरू किया था, मतलब काफी 2-3 साल ही हुए थे क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे ही आप बजाना नहीं शुरू कर सकते, बहुत कुछ सीखना बाकी था तब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साउंड इंजीनियरिंग करके एटलीस्ट म्यूजिक में जॉब करता हूँ
0: जी,
1: ताकि मैं म्यूजिक से कनेक्टेड रहूंगा, मुझे पता चलेगा म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो फिर तभी मैंने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा साउंड इंजीनियर

0: इनका कोर्स मुंबई में था एक बहुत अच्छा
1: जी,
0: वहां पर कि मैं कोर्स कर लेता हूँ और जॉब मिल गया है तो अगर तो इधर अगर एक बार प्लेसमेंट में मिल ही गया है तो फिर से मिल ही जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छा, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ।
1: हाँ।
0: तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग किया और फिर वहां से मुझे एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया।
1: अच्छा,
0: उसके बाद तो फिर मैं वही करता रहा 8 साल तक।
1: ये वही था जो आप चाहते थे?
0: हाँ, वो लकीली हो गया। वो
1: म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते थे और आपको
0: जुड़ा रहना चाहता था,
1: रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही जॉब मिल गया।
0: हाँ,
1: क्या
0: तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया और फिर मेरा काम भी म्यूजिक के रिलेटेड ही था। मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करता था। हाँ। अलग अलग म्यूजिशियन से मिलता था।
1: हाँ।
0: फिर कुछ सालों के बाद मैं लाइव साउंड भी करने लग गया। तो जो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज होती है, जो परफॉर्मेंस की जो टेक्निकलिटीज होती है, उसके बारे में भी मुझे काफी कुछ सीखने को वहां से मिल गया। और हाँ, और मजा तो आता ही था क्योंकि आप म्यूजिशियंस के साथ ही हो, म्यूजिक की बातें कर रहे हो, तो इस तरह से।
1: फिर भी आपके पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल तो कभी आया होगा कि एक इंजीनियर के रूप में आप बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकते थे अपने लाइफ में?
0: हाँ, मतलब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारा डिसीजन खुद लो।
1: अच्छा,
0: ताकि फिर बाद में रिग्रेट हो तो तुम्हारी वजह से हो तुमको।
1: इट्स योर लाइफ।
0: इट्स योर लाइफ।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि तो तुम सोच लो क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट तो होगी। और प्रोफेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उनको भी बहुत आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है तो हम तो आप तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे ये फील्ड में बिल्कुल भी। तो यू आर ऑन योर ओन, तो आपको अभी
1: आप अपने निर्णय पे पक्के थे?
0: हाँ, मतलब
1: पूरी तरह से। क्या
0: वो थोड़ा होता है, वो एज में स्टुपिडिटी होती है कि अच्छा मैं कर लूंगा, तो फिर आप घुस जाते हो उसमें और फिर
1: नहीं, लेकिन ये एक मजबूत जो है निर्णय ले पाना उस उम्र में भी बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ, मतलब वो एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, वो मेरे लिए निर्णय नहीं था। वो एक्चुअली मैंने सिर्फ सोच लिया कि अच्छा ये करना है और फिर इतना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं था तब। तो वो संभव
1: उस उम्र में इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि किसी एक निर्णय पे टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है।
0: हाँ, वो है, लेकिन वो हो गया, मतलब somehow फिर मैं वो सर्कल में ही घुस गया। फिर उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ ही सराउंडेड हो तो आपको स्ट्रगल्स दिख रही है और आपको दिख रहा है कि अच्छा पूरी इंडस्ट्री ये कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही।
1: अच्छा।
0: पूरी इंडस्ट्री वैसी है ना, तो
1: जी, जी, जी।
0: जब आप काम करने लगते हो और एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हो तो आप को लाइवलीहुड हो रहा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा पूरी इंडस्ट्री होती है जो सरवाइव कर रही है।
1: हाँ।
0: और बहुत काम है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है
1: जी।
0: आपको सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू डू द वर्क
1: जी।
0: तो ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कि आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। आप
1: काम बहुत है, टास्क बहुत है, करने वाले चाहिए।
0: आपको विलिंगनेस भी होना चाहिए
1: जी।
0: और आप सीखते रहना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डिग्री ले ली हो तो आपको, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क है तो आपको अपने इम्प्रूव करते रहना पड़ता है
1: जी। जी बिल्कुल।
0: तो एक वो चीज है और एक लक का भी है, मतलब मुझको ऐसा भी होता है कि आपको एक अच्छी संगति मिल जाती है और फिर आप उसमें सेट हो जाते हो, तो फिर वो वहां पे उसी तरह से हो गया था एक्चुअली साउंड इंजीनियरिंग में भी कि उसके बाद एक स्टूडियो में गया, फिर
1: जी।
0: वो स्टूडियो के ओनर भी मतलब काफी मतलब मेरी एज के थे वो, जस्ट दैट उन्होंने स्कूल के बाद ही सीधा स्टूडियो ही ओपन कर दिया 12th के बाद, इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिग्री। सो ही वाज अ कंपोजर, उनके साथ काफी सीखा काफी
1: जी, जी।
0: तो उस तरह मजा आ रहा था तो फिर कर रहे थे।
1: क्या बात है। और ये उम्र होती है जब बहुत से हमारे दोस्त होते हैं और वो दोस्त भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं हमें, मगर आपको संगत मिली उन साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओनर।
0: मेरे दोस्त भी एक तो ऐसा है ना कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरे दोस्त भी ऐसा बहुत लिमिटेड है।
1: अच्छा।
0: और मोस्टली मेरे जो दोस्त है वो भी है, बहुत अलग अलग फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी काफी सपोर्टिव ही थे।
1: क्या कोई खास दोस्त जिसको बारे में आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो?
0: एक्चुअली मेरा एक दोस्त था अश्विन है, मतलब अभी भी वो अभी भी है, तो हम दोनों ने एक्चुअली साथ में कोर्स करना शुरू किया, बचपन का ही दोस्त है, वो भी मेरे साथ ही बड़ा हुआ है कॉलेज में, वो भी गिटार प्लेयर था, वो क्लासिकल में नहीं आया, वो रॉक म्यूजिशियन ही था। और फिर उसके बाद तो हम दोनों ने साथ में साउंड इंजीनियरिंग किया, साथ में ही स्टूडियो में काम किया। अभी वो प्रीतम के साथ हेड, वो पूरा उसका साउंड डिपार्टमेंट संभाल रहा है।
1: क्या बात। तो संगीत आपकी सबसे पहली पसंद है, मगर इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको, आपके शौक क्या क्या है?
0: मुझे घूमना पसंद है, ट्रैक करना पसंद है।
1: अरे वाह।
0: बाकी आई थिंक बचपन में मैं जो कॉलोनी में रहता था वहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स थे, तो स्विमिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, तो वो सब एक स्पोर्ट्स वाला जो एंगल है।
1: हाँ।
0: तो अभी भी मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ कभी कभी, वो एक अच्छा लगता है मुझे।
1: जी जी।
0: अभी रिसेंट एक शौक है जो डिस्क्राइब कैसे करूं पता नहीं, बट कॉफी कॉफी का एक शौक काफी है आजकल, तो मैं मतलब जो स्पेशलिटी कॉफी है, बीन्स लाओ,

0: और फिर उसको ग्राइंड करके आप जो कॉफी बनाते हो.
1: अच्छा, कॉफी बनाने का शौक.
0: कॉफी बनाने का मतलब, आप एक तो इंस्टेंट कॉफी होते हैं जो आप डालते हो, पाउडर होता है उस पर पानी डालते हो और वो घुल जाता है.
1: मरी कॉफी के बीज लाकर उन्हें भून कर
0: लाकर उस, हाँ,
1: और उसको पीस करके फिर वो कॉफी बनाई जाती है.
0: तो उसकी एक बहुत मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है अब.
1: अच्छा,
0: तो वो देख देख के उसका शौक आ गया, तो फिर वो एक बहुत बड़ा शौक.
1: कई बार हमारे शौक हमारे काम को प्रेरित करते हैं, उनमें कुछ नयापन लाते हैं. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जैसे हमारे एक मित्र है, वो बेसिकली गिटारिस्ट है मगर वो पेंटिंग भी करते हैं. तो गिटार बजाते बजाते उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, तो उसके अनुसार उनका पेंटिंग नया पेंटिंग बन जाता है.
0: राइट.
1: कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है?
0: नहीं, तो आर्ट में तो मैं यूजुअली गिटार ही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ है. बट एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आप, तो ऐसा लगता है लोगों को कि आर्टिस्ट ऐसे खाली बैठे रहते हैं बहुत बार. या मतलब, और अगर कोई नॉर्मल, अगर आपका कोई 9 to 5 जॉब हो, आपको लगेगा कि अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है. इतना देर खाली, पूरा दिन खाली है तो कुछ और काम कर ले. बट होता है क्या कि वो जो खाली फेजेस होते हैं, जब आप अकेले में होते हो या जब आप चल रहे होते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं चल रहा होता और नए नए म्यूजिकल आइडियाज आते हैं.
1: अच्छा.
0: या मैं कहीं ट्रैक पे जा रहा होता हूँ, जब इंस्ट्रूमेंट से दूर होता हूँ.
1: जी बिल्कुल.
0: तो
1: और
0: हाँ,
1: आप कहीं घूम रहे हैं तो नेचर से भी आपको प्रेरणा मिलती
0: है काफी. हाँ.
1: जी.
0: तो जब अकेले होते हो और आपके पास कुछ होता नहीं है, फोन नहीं होता है, तो आप कुछ सोच में होते हो, तो उसमें से जो आइडियाज आते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं फिर वापिस आके जब आप ट्राई करते हो तो.
1: क्या बात, बहुत खूब. अनिकेत जी, क्लासिकल म्यूजिक में कई बार सुगम संगीत की झलक भी सुनने को मिलती है.
0: हाँ.
1: बंदिशें बजाई जाती हैं.
0: राइट.
1: तो ऐसा कोई टुकड़ा, कोई छोटा सा पीस जो गजल की तरह हो या किसी सुगम संगीत की तरह हो, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें?
0: आज जाने की जिद ना करूं, बजाओ थोड़ा.
1: वाह वाह वाह, स्वागत है.

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो और यूं ही धुने सुनाते रहो, मगर किसी भी आयोजन के समय की अपनी सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से, आप जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसके लिए ढेर सी शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। अगले सप्ताह हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुकता खींच के मारा है, सारा भेजा बाहर आ गया। लगता है आप शायर हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे
1: जी?
0: मेरा मतलब है, आप क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना।

0: मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
1: हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
0: जी?
1: या अपने रिश्तेदार जी से
0: जी?
1: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
0: लगता है आप
1: जी मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा।

0: देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे
1: जी? नहीं।
0: बरेली, रांची
1: जी? नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी, मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा था।
1: मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा, अब तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है, अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा? तुम कहते हो तो लो, मैं बैठा जाता हूँ। अब निकालो थैली।
0: गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया?
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: ठीक। मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगदेव
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है, भागते चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, ये पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब, 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
3: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
0: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
1: डॉक्टर साहब, गुड, वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार।
0: थैंक यू।
1: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
0: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया। खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा।
0: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
0: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
1: सुनाइए।
0: हाँ, तो मैं कह क्या रहा था?
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
1: अच्छा।
0: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
1: अरे बाप रे।
0: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ, तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
1: वाह।

0: फिर उसका पेट दबाया, फिर उल्टा किया, फिर पेट दबाई, फिर उल्टा किया, फिर आखिर में उसका गला दबा दिया। और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
1: राम भरोसे
0: जी,
1: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है।
2: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था, ये क्या हुआ?
1: समझदार नहीं था, फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
2: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
1: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों?
2: साबु भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
3: गुड, वेरी गुड।
0: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज बम्मा फेंक कर मारते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
3: क्यों?
0: उधर मरीज काट खाते हैं।
3: अरे बाप रे।
0: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
3: क्यों क्यों?
0: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
3: अच्छा,
0: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कभी मरता नहीं। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
1: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
0: जी,
1: तुम फिर आ गए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
1: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप?
0: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
1: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, इनकी नाक मोम की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। हाँ। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
0: चक्कू से।
1: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं? आप चुप रहिए
0: जी।
1: हाँ, तो राम भरोसे
0: जी सर,
1: तुम मेरी नाक काटोगे
0: जी?
1: पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: हाँ।
1: फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनसे बात भी तो करनी है ना।
0: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
1: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
0: अच्छा
1: जाओ।
0: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा पर एक सलाम, 1 2 1
3: जान बची जान,
0: 1 2 1
3: जान बची जान,
0: 1 2 1
3: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डालियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी हम सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

कार्यक्रम गीत गुंजन। जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। आजकल गर्मी बहुत है, हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा सतर्क रहें। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन में। ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, फिल्म है कोयला, गीत है इंदिवर का, संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, इस मौसम में सबसे अच्छा है अपने आप को बचाए रखने के लिए कि आप हल्के रंग के कपड़े पहनें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहनें और पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। ऐसे ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन और आज मैं हूं आपके साथ विवेकानंद।

आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली सहित साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे लगान फिल्म का ये गीत। गीत था जावेद अख्तर का और संगीत यार रहमान का। श्रोताओं, इस मौसम में उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि एक वर्ष से कमाई

आपके शिशु या और अन्य छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बाहरी वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या बीमार व्यक्ति हैं, विशेषकर हृदय रोगी हैं या उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का खास ध्यान रखें। समूह के लोग आबादी यानी कि इनकी तुलना में ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनका विशेषकर ध्यान रखें। और मौसम अच्छा हो, जिस दिन हवाएं हो, तो बाग में घूमने जरूर जाएं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत। गीत था आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल का। श्रोताओं, मौसम लगातार बदल रहा है, हीट वेव्स तेजी से बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है।

ऐसे में खुद की सुरक्षा तो करें ही, आसपास की सुरक्षा भी करें और ये भी ध्यान रखें कि आपके वाहन भी सुरक्षित हो। यानी धूप में मत खड़ा करें, धूप में खड़ा करेंगे तो पेट्रोल बेवजह, कहते हैं ना हीट होगा तो जलेगा, बेकार होगा। और या तो फिर ये भी कहा जाता है कि पेट्रोल के जब टंकी में भरा होगा फुल तो भी दिक्कत होगी, तो इसलिए पेट्रोल कम से कम यानी ईंधन का प्रयोग सोच समझ कर करें, इससे सब कोई सुरक्षित रहेंगे।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में भी आप सुन रहे थे प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ गीत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म थी मुकंदर का सिकंदर। कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075721।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
4: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

श्रोताओं, फिलहाल इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों को ठंडा रखें और खुद भी सुरक्षित रहें, जिससे आसपास भी लोगों को संदेश इस बात का हो कि आप जागरूक हैं। जागरूक भी करिए। फिलहाल

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090।
4: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार

0: 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।

0: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
1: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है।

0: विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वे को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुदमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here, who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले गजल।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीरताओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: कार्यक्रम के पहले पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण सजीव फनीन कार्यक्रम हेलो अयोध्या बस कुछ ही देर में है।

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आँखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559-24-42-04 और 7800-37-22-22।
4: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
5: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
4: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
5: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
4: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
5: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
4: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
6: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपकी अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
7: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
6: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान, महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
7: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
6: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
8: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: जी हाँ श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या शुरू हो चुका है। मिलाना है नंबर 7376-80-40-90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें। कॉल लगातार आ रही हैं। जी हाँ, कॉल लगातार आ रही हैं और कुछ श्रोताओं से ऑफ एयर बात भी हुई लेकिन फोन डिसकनेक्ट हो गया। तो हिम्मत मत हारें, फोन मिलाते रहें और मिलाते ही रहें। नंबर वही है 7376-80-40-90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें। लाइव फोन इन प्रोग्राम, एक कॉलर लाइन पर इनसे बात करते हैं। हेलो,

0: साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
0: गल्हर यादव बोल रहे हैं, पेपर मिल साहब।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या करते हैं
0: साहब? ये खेती बाड़ी भैंस गाय वहाँ कर रहे हैं काम।
1: अच्छा, तो और प्रोग्राम भी सुन लेते हैं, मौका मिल जाता है आपको?
0: अरे साहब, प्रोग्राम तो हमेशा दिन भर बाजा करत है।
1: क्या बात है, तो कौन सा प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है आपको
0: साहब? सब प्रोग्राम हमको अच्छा लागत है, सब प्रोग्राम अपना है, गलत बात।
1: अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? नंबर अगर 10 में 10 देना हो तो कौन सा प्रोग्राम?
0: सबसे अच्छा तो आप एक बार साहब, लेकिन लोग गीतियों बार।
1: हाँ, ये बात भी सही है। सही।
0: और हाल चाल अपना साहब? मजे में हूँ, गर्मी अर्मी
1: हम
0: बहुत ही।
1: हाँ, गर्मी तो बहुत है, हम बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन गर्मी से बहुत बचना है।
0: हाँ साहब, गर्मी से बहुत बचना है।
1: हाँ, क्योंकि जरा सा भी गलती होगी तो फिर मौसम जो है वो आप पर हावी हो जाएगा।
0: सही सही
1: है ना? तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, अपने आप को सुरक्षित रखें, सबको सुरक्षित रखें।
0: हाँ साहब,
1: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
0: साहब? गाना सुना के बाद कौन सी फिल्म की? गोरे गोरे मुखड़े काला काला चश्मा।
1: अरे ऐसा क्या मतलब, कोई मामला खास बात?
0: अरे साहब, ये बहुत दिन बाद आ रहा, तब तो नहीं सुनेगा वहाँ।
1: नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो जल्दी बजा था एक प्रोग्राम में।
0: नहीं नहीं, एक नहीं सुने साहब, हम कहिया तब हम आज कहें हम गाना आज ये प्रोग्राम में।
1: अच्छा,
0: मंगाऊ गाना जरूर।
1: अच्छा, इसीलिए आप मूड बना लिए थे कि ये सुनना है हमको?
0: हाँ, हम कहा साहब ये गाना सुनेगा।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। और गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं
0: साहब?
1: कह रहे हैं गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उपाय अपनाया है आपने?
0: साहब, उपाय यही है कि टिल्लू से पानी भैंस गाय जुड़वा दिया जाते, पेड़े तरे बांधा जाते, पेड़े तरे रहा जाते, छाहे छाहे।
1: बिल्कुल सही,
0: सब काम हो रहा है।
1: हाँ, और बिल्कुल बचना है खेत में भी आप?
0: हाँ साहब, चिड़िया एरिया का हम पानी भर दिए थे, पानी पिए।
1: अरे वाह,
0: चारा भी बहा दिए थे, चुन लिए थे, पानी पी लिए थे।
1: हाँ, सही है, एकदम सही सोच रहे हैं और आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
0: हाँ साहब,
1: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, फिर सुनिए।
0: हाँ साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन और करिए ऐसी ही खूबसूरत सी बातें और फिर बीत जाएगा बेहतरीन सफर। जी हाँ, हेलो अयोध्या का सफर शुरू हो चुका है, आकाशवाणी अयोध्या से मैं हूँ विवेकानंद।

0: जी हाँ श्रोताओं, नंबर वही है 7376804090, और आप मिलाते रहेंगे फोन, फिर हम आपसे कहेंगे हेलो हेलो जी
1: हेलो।
0: जी स्वागत है आपका, कहाँ से फोन लगाए?
1: हाँ सर, हेलो अयोध्या।
0: हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, हेलो अयोध्या से ही बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: नमस्कार
0: नमस्कार। हाँ
1: गाना सुनना था।
0: हाँ ठीक है, हम आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे, अपना नाम भी बताइए हुजूर, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हमारा नाम नागेंद्र कुमार है।
0: नागेंद्र जी कहाँ से?
1: अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ।
0: अम्बेडकर नगर से?
1: अम्बेडकर नगर, मीरपुर अम्बेडकर नगर से।
0: अच्छा अच्छा, तो ऐप पर प्रोग्राम सुन रहे हैं या रेडियो पर, ट्रांजिस्टर पर?
1: नहीं नहीं, हम तो मोबाइल पर ही सुन रहे हैं सर।
0: अच्छा अच्छा, तो कौन सी फिल्म का सुनेंगे गाना
1: जी?
0: गाना कौन सी फिल्म का सुनेंगे?
1: हाँ मोबाइल पर सुनते हैं।
0: अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: हेलो।
0: हाँ
1: हेलो।
0: अच्छा अब आई आवाज।
1: हाँ क्या करें।
0: हाँ मैं कह रहा हूँ कि कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे आप?
1: हम दोस्ताना पिक्चर का सुनेंगे।
0: दोस्ताना
1: गाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले के जलते हैं।
0: अच्छा मैं देखता हूँ आपका ये गाना है या नहीं है हमारे पास, तो वहाँ
1: लीजिए इनकी फरमाइश, अगर आपके पास नहीं तो लीजिए इनसे बात लीजिए, अभी बात कर लीजिए।
0: अच्छा नहीं, कौन सा गाना, कौन सा बताएं? फिल्म तो है हमारे पास, गाना भी देखना होगा।
1: और गाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले के जलते हैं।
0: अच्छा
1: हम जब खान दोनों लोग गाते हैं स्टेज पर।
0: जी जी देखता हूँ।
1: हेलो।
0: जी देख रहा हूँ आपकी पसंद का गीत मैं देख रहा हूँ, और बताइए क्या करते हैं?
1: सर मैं तो खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा।
1: पहले इलेक्ट्रिक का काम करते थे लेकिन वो सब छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम है छूट गया है सर।
0: तो
1: हेलो।
0: हाँ आपको आवाज नहीं मिल रही क्या हमारी बार बार? हेलो
1: जी।
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ हम कह रहे आपको आवाज नहीं मिल रही क्या हमारी?
1: हाँ थोड़ी कम मिलता, अभी ठीक हुई, अब आ रही आवाज।
0: अच्छा मतलब हमें लगता है बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है कुछ ना?
1: कहीं है प्रॉब्लम जरूर।
0: ठीक है तो
1: क्या गाना मिला कि नहीं मिला?
0: नहीं एक गाना मुझे मिला है, जाने क्यों, मुझे लगता है शायद ये वही होगा।
1: जी
0: हाँ, तो मैं आपके लिए वो प्ले कर रहा हूँ, सुनिए। और हमें लगता है नेटवर्क की वजह से, चूंकि आप मोबाइल में सुन रहे हैं तो शायद इस वजह से हम लोगों की नेटवर्किंग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐप पर
1: आकाशवाणी मेरी तरफ से नमस्कार बोल दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब सारे श्रोताओं को आपकी ओर से नमस्कार, और ऐप पर भी सुना करिए प्रोग्राम
1: जी।
0: हम कह रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप है, न्यूज ऑन एयर, उस पर सुना करिए, तो और क्लियर सुनेंगे आप, बढ़िया सुनेंगे।
1: जी ठीक ठीक
0: जी ठीक है, तो हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं फिलहाल
1: जी।
0: श्रोताओं मिलाइए फोन 7376804090 लाइव फोन प्रोग्राम, मिलाइए फोन मिलाइए। फिलहाल इनकी पसंद का गीत प्ले कर दिया है, पता नहीं वो जो चाहते हैं ये वो है या नहीं। फिलहाल मिलाइए फोन, होगी हमारी आपकर आपकी बातें।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्याय, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से। जी हाँ, मिलाना है वही नंबर 7376 8040 90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें। लाइव फोन इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएंगे और हम आपसे कहेंगे हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है?
1: हीराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: क्या बात है, इतनी दूर से आपका फोन आ गया आज।
1: सर मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ आपके कार्यक्रम में सर, 8-9 महीने हो गए। एक दिन हमारे जी सर, जब सर से मेरी बात हुई थी सर, 15 या 17 दिन हो गए होंगे सर।
0: अच्छा, तो 15 या 17 दिन पहले आपकी अमरजीत जी से बात हुई थी और फिर आज हमसे बात हो रही है।
1: जी सर,
0: क्या बात है, इतना समय आपने बिताया और उसके बावजूद आप आकाशवाणी सुनते रहे बीच में ना?
1: जी सर, अभी सुनना चालू किया 10-12-15 दिनों से। इस दिन से अमरजीत से बात, अमरजीत सर जी से बात हुई थी, उस दिन से चालू किया सर।
0: अच्छा, मतलब उसके पहले आप आकाशवाणी अयोध्या नहीं सुनते थे?
1: सर सुनता था पहले, करीबन 10-11 महीने पहले 1-1.5 साल तक सुना था सर।
0: अच्छा, फिर बीच में बंद हो गया और फिर जब उस दिन से बात हुई
1: उसके बाद? सर बंद कर दिया था, हाँ, किसी ने आपके यहाँ से, किसी ने सर ने मेरा कॉल काट दिया था सर।
0: अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, जानते हैं आप। एक बात मैं आपको बताऊं परमार साहब, फोन कोई भी हमारा साथी जो भी है हमारे साथ, एंकर अनाउंसर्स जो भी हैं, कोई भी फोन काटता नहीं कभी। अभी जानते हैं आप, अभी ऑफ एयर बात हो रही थी हमारी, गोंडा अयोध्या से कहीं से थी अंशिका यादव, लेकिन ऑन एयर नहीं आ पाई। जब तक ऑन एयर आई फोन कट गया और फिर लाइव फोन इन प्रोग्राम शुरू हो गया, उसके बाद से उनकी कॉल नहीं लग पाई। तो ऐसा होता है, कोई जानकर कभी नहीं करता है ना। खैर
1: हाँ सर, तो वो फिर मैंने 3 बार लगाया था सर, 3 बार काटा था सर, इसलिए फिर मैंने
0: नहीं, वो हो गया होगा, हो गया होगा, वो या तो गाना बजता रहा होगा या फिर ऐड रहा होगा। फिलहाल कोई अपने मन से नहीं करता ऐसा ना, क्योंकि आप तो आप लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं तो हम कैसे फिर आपसे बातें करेंगे, कैसे हमारा प्रोग्राम होगा, तो ऐसा नहीं है।
1: तो सर अमर जी को मैं इसलिए जानता हूँ सर, आकाशवाणी लखनऊ को कॉल मिलाते हैं वो, इसलिए मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर।
0: बढ़िया है, अच्छी बात है। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: गीत फिल्म का है सर, दिल का क्या तरेसा है वो हम उन्हीं पे मरते हैं।
0: दिल पिक्चर का नाम क्या बताया? दिल का
1: जीत, जीत
0: जीत फिल्म का।
1: जी सर, दिल का क्या करे साहेब हम उन्हीं पे मरते हैं।
0: अच्छा अच्छा, दिल का क्या करें साहेब हम उन पे मरते हैं।
1: जी,
0: तो गाना तो बहुत बढ़िया पसंद किया है वैसे आपने तो। अच्छा, करते क्या हैं आप, ये नहीं पता है ना शायद?
1: सर हम खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो इस समय कौन सी फसल है खेत में?
1: सर इस वक्त तो खेत खाली हो चुके हैं, अभी हम बखर जुताई कर रहे हैं, उसमें मकाई जुताई हो रही है सर, और जैसे ही बारिश चालू हो जाएगी तो उसमें फिर सोयाबीन मक्का की बोनी करेंगे सर।
0: तो इस समय तो समय जायद की फसल का है ना? कि
1: हाँ सर, मूंग वगैरह बोए हैं, कुछ थोड़े बहुत बोए हैं सर, ज्यादा नहीं बोए हैं।
0: चलिए बढ़िया है, तो लगे रहिए मौसम को देखते हुए, लेकिन काम करना है, सतर्क रहे।
1: जी सर, बहुत काफी टेम्परेचर है यहाँ पर, 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहता है।
0: यही यही हो ही रहा है इस समय तो।

0: टेम्परेचर को देख करके और अपना ख्याल रखते हुए खेती किसानी झूम के करिए, ठीक है। तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: तो सर मैं ऑन एयर आ गया था क्या?
0: यस, आप ऑन एयर हैं।
1: अच्छा सर, धन्यवाद सर।
0: आप ऑन एयर,
1: मित्रों को याद कर सकते हैं सर?
0: जी,
1: दो तीन मित्रों को याद कर सकते हैं?
0: हाँ, बोल लीजिए।
1: पहले कानपुर से हैं पूनम दीदी जी, और गुंजन तिवारी जी अयोध्या से हैं, और विजय पांडे जी हैं बलरामपुर से।
0: क्या बात है, ठीक है। तो
1: इन दोस्तों का सुनना चाहेंगे सर।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत प्ले हो चुका है, एंजॉय करिए।
1: धन्यवाद सर।

0: जी हाँ श्रोताओं, दिल का क्या करें, फोन मिलाते रहिए, यही करें। नंबर वही है 7376-8040-90। हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका।
1: जी मैं अर्जुन जी बोल रहा हूँ।
0: अर्जुन सिंह?
1: अर्जुन जी, अर्जुन यादव।
0: अच्छा, अर्जुन यादव बोल रहे हैं अम्बेडकर नगर से,
1: जफलपुर से। अयोध्या।
0: अच्छा, अयोध्या से, ठीक है। लेकिन कहाँ से बताए आप, ये कंफर्म नहीं हो पाया। अयोध्या में कहाँ से?
1: ग्राम जफलपुर से जी सर।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं अर्जुन जी आप?
1: जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी शादी मतलब होने वाली है।
0: अरे ये कैसे, आप मतलब कुछ तो करते ही होंगे, हुजूर पढ़े होंगे, लिखे होंगे, कुछ तो किया होगा ना?
1: मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस पढ़ाई करता था, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: पढ़ाई में मैंने मुझको दोनों हाथ से दिखता नहीं है सर।
0: अच्छा अच्छा, तो उसके बावजूद आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कितना पढ़े हैं आप?
1: जी जी
0: अर्जुन जी,
1: आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर।
0: अच्छा, ये भी

0: ये बीच बीच में समस्या आ रही है, तो अब आई आवाज?
1: जी जी जी आ रही है। मैं
0: अच्छा, तो हम कहे अर्जुन जी, क्या कैसे फिर पढ़ाई किए हैं आप, कितनी पढ़ाई किए हैं?
1: जी हमको दिखता था और हमारा नाम हमारे मम्मी पापा ने लिखा दिया था, तो हमने सुन सुन के मतलब याद कर लिया था और हमने पढ़ाई फिर 5 क्लास तक किया, उसके बाद पढ़ाई नहीं किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, 5th क्लास तक आप पढ़े जी। अच्छा, तो अर्जुन जी आज कौन सा फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी मैं गाना सुनना चाहता हूँ हीरा फिल्म का, मन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: हीरा फिल्म का है ये
1: जी। और गाने की बोल है, मन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी दिल जाए चाहे मेरी जान जाए।
0: अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ आपकी पसंद का गीत की हीरा की तमन्ना है ये,
1: किशोर कुमार की आवाज में है और उसके बाद में कोई मतलब हमको मालूम नहीं।
0: नहीं नहीं, बढ़िया, आपको ये तो बिल्कुल सही याद है कि किशोर कुमार की आवाज है, साथ में लता मंगेशकर है ना, और पन्ना की तमन्ना है।
1: जी जी,
0: नहीं ठीक है, बढ़िया। तो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ तो आप अकेले प्रोग्राम सुन रहे हैं, और भी लोग हैं आपके साथ?
1: जी जी मोबाइल पर सुनते हैं।
0: अच्छा नहीं, और भी लोग हैं आपके साथ, क्या आप अकेले सुन रहे हैं?
1: मैं अकेले हूँ, मम्मी पापा लेटे हुए हैं। अच्छा, और हम छत पर आपकी बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है, ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले करते हैं, फिर सुनिए।
1: जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे।
0: जी बताइए।
1: जी मैं कह रहा हूँ कॉल करने के बाद में मेरा नाम ले लेना, और मुझको दोनों आपके लिए दिखाता है, और मैं अपना अपना अपना नाम में रेडियो पर सुनना चाहता हूँ जी।
0: अच्छा, तो आपका नाम तो रेडियो पर आ गया, आप हमसे बात कर रहे थे, ऑन एयर ही बात कर रहे थे हम लोग।
1: जी मैं अपने आप को सुनना चाहता हूँ अपने आप मोबाइल पर।
0: ठीक है, बिल्कुल, हम आपका नाम अभी फिर से रिपीट करेंगे, आप उसे सुनिएगा, आपकी पसंद का गीत हम प्ले करेंगे।
1: अभी नहीं सर, जब मैं कॉल समाप्त करेंगे तब।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मैं करूँगा। ठीक है, आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं, सुनिए
1: जी सर। नमस्ते
0: नमस्ते।

फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और आपको मिलाना है नंबर वही है 73-76-80-40-90। फिर होगी हमारी और आपकी बातें, लेकिन आधा सफर ये टिक टिक करती घड़ी रुकती नहीं है, पूरा हो चुका है। फिलहाल मिलाते रहिए फोन और फिर

श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत। और इस गीत को पसंद किया था अयोध्या से ही एक हमारे श्रोता अर्जुन यादव ने। फिलहाल आप सुन रहे हैं सजीव।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है। बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
4: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, नंबर वही है 7376804090 और आप मिलाएंगे फोन, हम आपसे कहेंगे हेलो।
5: नमस्कार।
4: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: सर, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, देवकाली से।
4: अच्छा, घनश्याम जी देवकाली से, देवकाली अयोध्या से।
5: जी जी
4: जी। तो आप पहली बात तो घनश्याम जी रेडियो से थोड़ा सा दूर हो
5: गए। पहली बार कॉल लगाया और कॉल मिल गया।
4: क्या बात है। तो एक निवेदन है हमारा कि रेडियो से थोड़ा सा आप दूर हो जाएं।
5: जी,
4: रेडियो से, ट्रांजिस्टर से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, आवाज आ रही बहुत तगड़ी।
5: हाँ हाँ,
4: लोगों को सुनने दीजिए और आप और हम बात करते हैं।
5: जी जी, आप सुनिए,
4: है ना। तो घनश्याम जी, क्या करते हैं?
5: जी, मेरा स्टूडियो का है, विवेक स्टूडियो देवकाली।
4: क्या बात है, बढ़िया। आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ करते तो हैं, है ना
5: जी जी।
4: तो फोटो और वीडियो वगैरह सबका काम करते होंगे आप ना?
5: जी जी, सबका काम करते हैं।
4: तो फोटो में कितना मतलब आपको फायदा किसमें होता है, फोटो में या वीडियो बनाने में?
5: फोटो खींचने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे।
4: अच्छा, पसंद
5: वीडियो का काम बहुत कम करता हूँ।
4: अच्छा, वीडियो का काम आप कम करते हैं, तो अच्छा लगता होगा फिर, हमें लगता है। जो अच्छा, जिस चीज को अच्छा, जो चीज अच्छी लगती है उसमें अगर काम करना पड़े तो वो और अच्छा लगता है।
5: जी जी।
4: तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
5: सर, आपसे पहली बार तो फोन मिला है, तो गाना तो मुझे कोई चॉइस करके नहीं रखे, आप कोई भी गाना सुना दीजिए।
4: चलिए ठीक है।

0: तो और अच्छी बात है। और आप मतलब प्रोग्राम सुनते हैं कि नहीं सुनते थे मतलब पहले?
1: जी प्रोग्राम सुनते हैं।
0: हाँ।
1: नंबर जो आप बताते हैं बहुत शॉर्ट मतलब बहुत तेज बताते हैं तो नंबर याद नहीं हो पा रहा था।
0: अरे नहीं भाई, नंबर तो इतना इजी नंबर है, इतनी बार बताते जैसे दो बार सुन लीजिए फिर दो।
1: हाँ सर, बहुत बहुत तेज बताते हैं ना तो उतना लिखने में टाइम लगने तो पता चला आगे बढ़ गया।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक।

श्रोताओं, फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या से, लेकिन एक तकनीकी समस्याएं कुछ आ रही हैं। सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ। फिलहाल अभी थोड़ा सा अंतराल या फिर कार्यक्रम के लिए कीजिए इंतजार।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये

ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम।

कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांट

क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।